होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: से बोलो, मैंने सुनिया
1: जय माता दी,
0: दिल से बोलो
1: जय

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
6: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
8: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
9: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
8: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
10: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
8: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन

0: आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: मेरी कसम
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
9: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट।
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
11: सिमरन जा जी रहे अपनी जिंदगी।
12: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम, वेलकम बैक है जी। मैंने तो यहाँ पर दस्तक दे दी है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। सुप्रभात जी, एक सुपर ऊपर वाला गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम आरजे आनंद है। इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। वक्त हो गया है स्टूडियो की घड़ी में 8:19:12। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के स्टेशन ऑफ द नेशन पर। जी हाँ, और अगर बात करें आज के दिन की, तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज वेंसडे का दिन है, यानी कि बुधवार का दिन, बुध करे शुद्ध। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। और तारीख की बात करें तो बहुत ही प्यारी तारीख है आज, 3 जून की सुबह। एक ब्रांड न्यू वीक है, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, और एक ब्रांड न्यू 3 जून की तारीख है। ऑफकोर्स यार, एक नया महीना और एक नए हफ्ते की शुरुआत हुई, तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ इस हफ्ते को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896। ये वो स्टूडियो का नंबर है जिसके जरिए मैं और आप करते हैं ढेर सारी बातचीत। श्रोताओं, लेकिन शुरू करेंगे आज का थॉट ऑफ द डे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, कहते हैं नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ी उपलब्धियों में समय लगता है ना। तो अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो थोड़ा सा ना वेट करिए, अपनी कड़ी का थोड़ा सा इंतजार करिए। जो जितना बड़ा सोचते हैं ना, उसकी ज़िंदगी में उतनी ही बड़ी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा वक्त लेता है मेरे दोस्तों। कहते हैं ना, एक छोटी सी झोपड़ी को बनने के लिए 1 से 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन एक बड़ी भव्य इमारत बनने के लिए सालों लग जाते हैं, है ना। तो अगर आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना मेरे दोस्त। श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन भी होंगी, और आज करियर काउंसलर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, यानी कि आज हम आपके करियर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस पर भी एक टॉक में आपको सुनवाऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन गाना जिसके साथ करेंगे आज की मॉर्निंग सफर की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, अगर आप भी मेरे साथ इस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। 9837896896 ये मेरे स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर के जरिए आप हो सकते हैं हमारे साथ इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बढ़िया बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी, मैंने आपको बोल ही दिया है अपना नंबर। इस नंबर पे आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है। वेदर की बात डेफिनेटली करेंगे, आज क्या कहता है आज का वेदर, आज का मौसम कैसा है, इस पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले चर्चा करेंगे आज की इस बेहतरीन ट्रैक की। इस गाने के बाद सीधा करियर काउंसलर की तरफ आपको लेके जाएंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, उनकी खास बातचीत आपको सुनवाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वक्त हो गया है 8:22, 3 जून की सुबह। आनंद के साथ हैं आप, दिस इज वेंसडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: डाउन यहाँ पर नहीं है, दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया। श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
2: नहीं मिला।
3: मुझ

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
5: मॉर्निंग। एग्जैक्टली आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजी आनंद के साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक खास कॉन्वर्सेशन सुनवाने वाले हैं। जैसे कि मैंने करियर काउंसलर का जिक्र किया था तो ये बहुत जरूरी है, खास और महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद मैं जल्दी लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, सुनते रहेंगे आरजे आनंद को।
1: हेलो जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन आप सुनने वाले हैं, एक खास बातचीत, बेहद ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है ना, जब भी हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं स्पेशली उनके करियर को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 के बाद स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार 12 तो कर लिया लेकिन अब आगे क्या करें। स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज उनको भी नहीं समझ में आता कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट होगा और क्या नहीं। इन सभी पर बात करने के लिए मैंने सोचा अपने रेडियो भी कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लेडी को इनवाइट किया है अपने शो में। आज हमारे साथ कौन कहां से जुड़ी है, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपको भी ना थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ओ माय गॉड, सच में इतनी दूर से आप लेकर आए हमारे करियर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि हम क्या चुने क्या ना चुने। यस ऑफ कोर्स, ये हमने सोचा आप एफएम मुरादाबाद सुन रहे हो तो मुरादाबाद पे कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कौन है आइए जरा बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
6: थैंक यू सो मच आरजे आनंद मुझे इनवाइट करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत खुश हूँ आपके साथ ये मंच शेयर कर पा रही हूँ टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और के साथ।
1: मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और बहुत कम मौका मिलता है हमें कि जब हम मतलब ऐसे लोगों से भी कनेक्ट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को छू मंतर करते हैं और उन्हीं एक आप हैं।
6: बहुत अच्छा लग रहा है कनेक्ट करके एंड आज जो टॉक शो होने वाला है इसको आगे जाने के।
1: मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए हमारे मुरादाबादीज आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, सो प्लीज टेल अस अपने बारे में थोड़ा सा क्विकली बता दें आप।
6: ओके, आई एम कृति मोहित वोरा, मैं करियर काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैंने स्टडीज की भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, NEPSC की तरफ से फॉर करियर एंड एजुकेशन काउंसलर एंड करेंटली मैं एक एकेडमिक पोजिशन होल्ड कर रही हूँ एक कंपनी में and I do take personality development classes also.
1: That's very nice ma'am, beautiful. And but right now where are you? ये तो हमारे listeners को पता चलना चाहिए आप किधर हैं अभी।
6: मैं अमची मुंबई से हूँ।
1: Oh my god, मुंबई से अच्छा, तो मतलब वो उसे मुंबई में उसे बोलते हैं तो मैं कशिक आई।
6: Yes yes।
1: मुंबई की थोड़ी थोड़ी भाषा हमने भी, तो सोचो गाइज मुरादाबाद में सीधा मुंबई वाली फील आपको दे रहे हैं कृतिका मैम। सो मैम थैंक यू सो मच, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने शेयर किया। और मैम आपको पता है ना, जैसे ही 12th हो जाता है बच्चों का, पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बड़े टेंशन में चले जाते हैं। उनको ये लगता है पता नहीं यार 12th तो जैसे तैसे कर लिया बच्चे ने, अब आगे क्या कराएं, ये बड़ी कंफ्यूजन है स्पेशली हम भारतीयों में।
6: यस एग्जैक्टली, मैं समझ सकती हूँ एक्चुअली ये कंफ्यूजन होना भी जरूरी है क्योंकि आजकल ऑप्शन भी इतने सारे हैं। पहले तो स्टैंडर्ड ऑप्शन थे,
1: अच्छा
6: पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो साइंस में जाएगा, एवरेज हो तो कॉमर्स जाएगा,
1: एब्सोल्युटली
6: नहीं हो तो ह्यूमैनिटीज में।
1: राइट,
6: आजकल की एरा में बहुत सारे ऑप्शन है, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस,
1: करेक्ट।
6: तो अगर वो बच्चा करियर काउंसलिंग लेता है तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिलता है और एक गाइडेंस मिलती है कि आगे क्या कर सकता है, रादर देन सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से कंफ्यूजन बढ़ता है।
1: एब्सोल्युटली कृति मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया एंड आई थिंक मुझे भी यही चीज लगती है. और आजकल इतने सारे ऑप्शन आने के बाद भी लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं. सो वेल, इस विषय में हम डेफिनेटली आपसे टॉक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा, व्हाट एग्जैक्टली इज करियर काउंसलिंग, क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को कि आखिर करियर काउंसलिंग है क्या. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस विषय में.
6: बेसिकली ये गाइडेड प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, बच्चे को समझते हैं, उसका इंटरेस्ट, एबिलिटीज, उसकी पर्सनालिटी, स्किल्स क्या क्या है, और उस हिसाब से उसको एक राइट दिशा दिखाते हैं जहाँ पे वो अपना करियर चूज कर सकता है.
1: करेक्ट. ओके, वही ना, एक्चुअली जिस फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, ये आज के समय में ना बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है. हालांकि डिजिटल टाइम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजें अवेलेबल है, बट अंदर की जो चीजें होती है ना, करेक्ट, वो चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कहीं पर ही.
6: वो बात है क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है, बट वो उनके लिए कितना सूटेबल है, एक्यूरेट है, वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वो कंफ्यूजन अभी भी होता है.
1: एग्जैक्टली मैम, एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में अक्सर आता रहता है कि व्हाई इज करियर काउंसलिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के समय में करियर काउंसलिंग इतनी जरूरी क्यों हो गई है, तो ये जानना तो डेफिनेटली बनता है, वो भी जब आप मेरे साथ हैं तो.
6: यस, आज आनंद, मैं समझती हूँ. जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले के जमाने में मैक्सिमम क्या ऑप्शंस आते थे, हाथ में गिनने लायक उतने ही ऑप्शंस.
1: करेक्ट.
6: इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर या कोई सरकारी नौकरी कर लो.
1: राइट.
6: से ज्यादा तो कोई ऑप्शंस किसी के मन में आते ही नहीं थे. बट अभी के कॉम्बिनेशन एंड जो चूज कर सकते हो, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक एग्जांपल मैं बोलूं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस विद बायोलॉजी. तो अगर बच्चे को बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है बट टेक्नोलॉजी भी उसका समथिंग पैशनेट है वो, तो ये दो कंबाइन करके वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकता है.
1: बिल्कुल.
6: तो अभी ऐसे मेजर माइनर ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता है, ट्रेंड के हिसाब से कंफ्यूज हो जाता है.
1: करेक्ट.
6: एंड फिर लेटर रिग्रेट करता है. तो वेयर करियर गाइडेंस विल हेल्प हिम विद द प्रॉपर गाइडेंस देयर.
1: ऑल राइट. ओके, सो आई होप लिसनर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको इस सवाल का जवाब डेफिनेटली मिल गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर. अच्छा मैम, जो स्टूडेंट है वो करियर चुनते समय सबसे बड़ी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि अफकोर्स करते ही करते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हो ही जाती हैं अक्सर स्टूडेंट से?
6: पांच मेजर गलतियां मैं बताना चाहूंगी एक्चुअली, जो मेजरली बच्चे करते हैं. एक तो जो दोस्तों ने चूज किया है वो करियर ही हमारा करियर होता है, डिसाइड कर लेते हैं.
1: करेक्ट करेक्ट.
6: दूसरा होता है, पापा ने बोला मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, मम्मी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, सो लेट्स डू इट.
1: मैं
6: बनना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, अपने आप को हम पूछते ही नहीं है.
1: करेक्ट. हमारी क्या खुद की इच्छाएं हैं?
6: यस. फिर दूसरा रहता है द ग्लैमर साइड, या पैसा जिसमें ज्यादा है मैं वो बनना चाहता हूँ, बट तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है नहीं है, पॉसिबिलिटी है तुम्हारे जगह में जॉब मिल पाएगी, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, उसका करियर कितना अच्छा जाएगा वो डोमेन में, ये सब नहीं ध्यान रखते हैं. एंड फोर्थ, जैसे मैं बता रही थी, सबका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ हमेशा देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू वर्क रियली वेल. एंड देन चूजिंग द करियर बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर होना चाहते हो एंड मुरादाबाद में ही रहना चाहते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो उधर तो कोई माइंड ही नहीं है पेट्रोलियम के लिए. जैसे नांतला आप मुरादाबाद छोड़ के जाना चाहते हो, कहीं अब्रॉड वर्क करना चाहते हो, या कोई माइनिंग में वर्क करना चाहते हो, देन ओनली उसका कोई फायदा होगा आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ने का भी.
1: ओके.
6: तो दीज आर द मेजर फाइव थिंग्स मैं आपको बोल सकती हूँ. एक फ्रेंड्स की तरफ से स्ट्रीम चूज मत कीजिएगा पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर से. दूसरा, ट्रेंड या पैसा देख के अपनी इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर करके और प्रॉपर एडमिशन ना लेके रिसर्च करने के अलावा.
1: वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आप चीजों को एक्सप्लेन कर रही हैं. थैंक यू सो मच. एंड एक क्वेश्चन जो मेरे नहीं हर किसी के जहन में होता है कि जो करियर काउंसलिंग है वो किस उम्र में या किस स्टेज में एक्चुअली शुरू होनी चाहिए, आपको मैम क्या लगता है?
6: जो आइडियल एज बोलते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, वो ग्रेड 8 to 10 होता है.
1: ऑलराइट.
6: ऐसा नहीं है अगर अभी मेरा कोई लिसनर अभी होगा कि 11th ग्रेड का है, इट्स नॉट द राइट टाइम, इसका टाइम चला गया है, नहीं. बट आइडियल जो बोलते हैं वो क्लास 8 टू 10th ग्रेडर्स के लिए होता है. बट ये यू कैन इवन टेक करियर काउंसलिंग एट दी ग्रेड 11 और व्हेन यू आर वर्किंग, या आप कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन ले चुके हो बट स्टिल कंफ्यूज हो, तो देयर इज नो इश्यूज, नहीं ले सकते. बट आइडियल इज ग्रेड 8 टू 10.
1: 100%. बहुत ही बढ़िया कॉटन मैम. एक्चुअली मुझे भी लगता है मैम, जो आपने बहुत अच्छे से जो चीज़ें डिफाइन करी, जो आपने इन किया, ये बहुत अच्छा एक तरीका और लोगों को समझ में भी आ रहा है. आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. आज करियर काउंसलिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं.

0: मैम के साथ, और बहुत जरूरी है। अभी जिन बच्चों ने 12th किया है, हमने सोचा उनके लिए जो कंफ्यूजन वाला ये सेशन हो जाता है ना 12th के बाद, की कहाँ जाए, कौन सी स्ट्रीम ले, किस में जाए, किस में करियर बनाए, बहुत सारी यू नो स्पेशली करियर को लेकर नहीं मैम, स्टडी को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
1: आई अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजन जो वो एज में रहता है वो बहुत ज्यादा ही रहता है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग मच क्लैरिटी, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या, आप नहीं समझ पाते हो, कंफ्यूजन रहता है।
0: करेक्ट। अच्छा कृतिका मैम, क्वेश्चन जो मुझे आई एक्चुअली लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए, जो करियर काउंसलिंग है, क्या सच में वो जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेके, जो सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं, क्या उन्हीं के लिए है या फिर सबके लिए है करियर काउंसलिंग, क्या लगता है आपको मैम?
1: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो वीक है या टॉपर है उनके लिए ही होता है। ये करियर काउंसलिंग हर एक बच्चे के लिए है जिसको यू नो राइट डायरेक्शन चाहिए, अपनी पर्पस एबिलिटी समझ के एक करियर चूज करना है, सो दैट यू नो हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट दोनों मिल पाए। करियर इज चॉइस ऑफ लाइफ बेसिकली, जिस हिसाब से मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज नॉट यू नो सिर्फ वीक बच्चा अपना चॉइस बनाता है कि यू नो टॉपर बनाता है, सबको अपनी लाइफ चॉइस करना होता है।
0: एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। कृतिका मैम, दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई डोंट नो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि मैं पहली बार किसी करियर काउंसलर से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्टेशन के थ्रू, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई एम हियर विद यू, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने शेयर किया हमारे स्टेशन पे हमारे लिसनर्स के लिए, सो थैंक यू वेरी मच बाय द वे।
1: आई एम टोटली हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्कस, बिकॉज ये मेरा बड़ा पैशन है टू गाइड यंग एडल्ट्स, यू नो।
0: सो यू नो, थैंक यू वेरी मच मैम, माय प्लेजर मैम। दिस इज माय क्वेश्चन कि क्या करियर काउंसलिंग सेशन बेसिकली जो होती है वो किस चीज के लिए, हालांकि इसमें करियर ऑप्शन जब ये दे दिया गया है करियर काउंसलिंग, सो आई नो वेरी वेल, बट मुझे अंदर की चीजें जाननी है, इस पे किस चीज के बारे में बात होती है, कैसे जो काउंसलर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या चीज करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानना है कि बेसिकली करियर काउंसलिंग सेशन में होता क्या है।
1: ओके, तो मैं आपको बता दूंगी अगेन, ये भी एक 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगी। पहले हम स्टूडेंट को समझते हैं उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है। देन सेकेंडली उसका एकेडमिक बैकग्राउंड,
0: ओके,
1: पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, नहीं है, एवरेज है, ट्यूशन क्लासेस का जाना आना बंद है, नहीं, सो ऑल दिस एकेडमिकली वी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं उसके साथ करियर ऑप्शन, एंड देन वी ऑल्सो कंडक्ट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें यू नो थ्रू दैट रिपोर्ट मैं समझ पाती हूँ उनका इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, वीकनेसेस सब जान पाते हैं, एंड देन लास्टली वी क्रिएट द करियर रोड मैप।
0: ऑल राइट, अभी मेरा क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोमेट्रिक्स, इसी पर हम लोग अभी बात करने वाले थे।
1: यस यस, तो साइकोमेट्रिक बेसिकली एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम बच्चे को समझ पाते हैं।
0: ऑल राइट,
1: जैसे ईपीजी होता है जिससे हार्ट का पता पड़ता है, विद द सेम वे एक करियर काउंसलर एक टूल यूज करता है टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। तो ये बहुत डेटा बेस्ड है एंड इट इज रिसर्च बैक, साइंटिफिकली बैक टूल है, विच इज नॉट रैंडम गेस वर्क के हिसाब से, नहीं मैं बताती हूँ कि ये चूज कर लो ये कर सकते हो, नहीं, इट्स ऑल साइंटिफिकली बैक।
0: ऑल राइट मैम, जेन्युइनली आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अगला मेरा क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये पब्लिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली पूछते रहते हैं हमारे लिसनर्स, रेडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी बनती रहती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स सबसे ज़्यादा। वैसे मैम अगर मैं बात करूँ करियर चूज करने में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है उनका रोल, स्पेशली पेरेंट्स का?
1: पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के भविष्य प्लान करने के लिए, रादर दैन एक पेरेंट को हमेशा अपनी ड्रीम्स इम्पोज नहीं करनी चाहिए, लाइक मैं चाहती हूँ आप इंजीनियर बनो, फिर मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर बनो, ये नहीं होता है। इनफैक्ट बच्चे का इंटरेस्ट समझना, उसकी एबिलिटी समझ के उसको सपोर्ट करना, एनकरेज करना, ओपन कॉन्वर्सेशन करना बच्चे के साथ, ओपनली डिस्कस करना कि ये करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या सोचा गया था, कैसे आपने ये मन में आया, वेरी ओपन डिस्कशन विद द स्टूडेंट, सो दैट यू नो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा। इट इज कम क्लैरिटी टू कंफ्यूजन टू क्लैरिटी बेसिकली।
0: या दैट्स वेरी नाइस मैम, दैट्स वेरी नाइस. कृतिका मैम, कृति मैम, मेरा जो क्वेश्चन एक और है कि स्टूडेंट भविष्य में जो उनके करियर को लेके वो खुद को मतलब कैसे प्रिपेयर करें, कैसे खुद को तैयार करें ताकि जो भी चैलेंजेस है, जो भी कंपटीशन का टाइम है, उसमें वो खुद को आगे लेकर जा सकें, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराएं. होते हैं ना स्टूडेंट करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कभी वो अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती हैं.
1: मैं कुछ 4 पॉइंटर्स बताऊंगी जो नॉर्मली एक बच्चा कर सकता है अपना एकेडमिक प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए. बेसिकली फर्स्ट है जो 21st सेंचुरी के जो बिल्ड करने को बोलते हैं, तो सारी 4 C's इन एजुकेशन. 1 इज क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी.
0: ऑलराइट,
1: अगर ये 4 स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो अपने में बहुत अच्छा रहेगा. नेक्स्ट इज जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जाओ, समर कैंप, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जितना भी करेक्ट कर सकते हो विद इन योर लोकेलिटी या बाहर कॉलेजेस में. दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड.
0: दैट्स वेरी नाइस.
1: थर्ड थिंग इज टू रीड बुक्स, टू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ, कनेक्ट विद द मेंटर.
0: एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: अगर आप कोई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर योर ग्रेजुएशन, तो उधर के पास स्टूडेंट, करेंट स्टूडेंट से समझो कैसा है एनवायरमेंट, ऐसा भी आप कॉलेज जा रहे हो, क्या मेंटर्स सिखाते हैं. तो कनेक्ट विद दोस लाइक माइंडेड पीपल. नेक्स्ट इज यू नो टू बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी. एंड लास्टली विच इज क्वाइट एसेंशियल करियर के लिए भी, पर्सनली भी, कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट.
0: एब्सोल्यूटली 100% सही बोला आपने मैम. आजकल ना मोबाइल का बहुत ज्यादा आपको भी पता है क्रेज बढ़ गया है. आजकल के यंगस्टर, जेंजी, सभी लोग मोबाइल में, पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, नो डाउट. तो ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया, इसमें लोग बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं. आजकल ChatGPT, AI सब कुछ आ गया है, तो लोगों को लगता है यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं. जबकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जब आप किसी करियर काउंसलर के पास जाते हो तो जो डायरेक्शन वहां से मिलती है वो आपको ChatGPT या AI से नहीं मिल सकती है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है, बट आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो नहीं समझ में आता है.
0: करेक्ट, करेक्ट.
1: इट्स वेरी वास्ट, एक पूल की तरह मैं बोल सकती हूँ, या नदी की तरह इंफॉर्मेशन रहता है. बट उसको फिल्टर करके समझना कि आपके लिए क्या अप्लाई कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती. सो बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ लेटर ऑन.
0: Absolutely, ma'am. Thank you so much. इतना टाइम आपने शेयर किया हमारे लिसनर्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रिविलेज टाइम. एंड आई एम सो हैप्पी आपने इतना टाइम निकाला और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और आपको मैम आई होप अच्छा लगा हो हमारे साथ, हमारे मुरादाबादी से बातचीत करके.
1: यस, यस, बहुत अच्छा लगा. एंड आई वुड एंड विद अ स्मॉल कोट बेसिकली.
0: प्लीज मैम,
1: चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ.
0: ऑलराइट मैम. एंड बाय द वे एक और एक लास्ट मैसेज, एक छोटा सा आपकी तरफ से कोई एक संदेश, व्हाट फाइनल मैसेज वुड यू लाइक टू गिव स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लिसनिंग टुडे?
1: पेरेंट्स के लिए यू नो सपोर्ट योर चिल्ड्रेन, समझो उनको जितना भी हो सके और भरोसा रखो उनकी जर्नी में भी. दैट इज क्वाइट एसेंशियल. एंड बच्चों के लिए यू नो बिलीव इन योरसेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन टू.
0: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू. आई कांट बिलीव दिस, कितनी जल्दी से हमारा टाइम हो गया और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी सी बात हुई, अभी तो और करनी थी हमें आपसे बातचीत. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनबिलीवेबल 20 मिनट होने को आ गए, बट पता ही नहीं चला. मैंने इंटरव्यूज तो बहुत सारी किए लेकिन ये बड़ा डिफरेंट था.
1: थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट.
0: सीरियसली,
1: आई विश ऑल माय लिसनर्स अ वेरी ग्रेट डे अहेड.
0: एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अखिल जी, जिन्होंने आपसे हमें कोऑर्डिनेट कराया. आई एम सुपर ग्लैड, बिकॉज बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ आप जब बात करते हो तो एक पॉजिटिविटी भी आती है और कुछ सीखने को भी मिलता है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स को भी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी नॉलेज मिलेगा. इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है. सो थैंक यू मैम वंस अगेन. सो मैम, जाते जाते हमारे मुरादाबादीज को आप कोई संदेश देना चाहें और साथ में कुछ कहना चाहें जो आपको लगता है कि छूट गया, नहीं ये चीज भी मुझे बोलनी चाहिए. आनंद,
1: तो करियर एक ऐसा है यू नो इट इज ऑल योर लाइफ चॉइस. तो एक अच्छा साउंड डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा. बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन, एंड दैट विल वर्क यू एज अ स्ट्रेंथ. एंड पेरेंट्स के लिए जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, समझिए और उनकी जर्नी में साथ दीजिए. बहुत लंबा जाएंगे वो. एंड एट एनी टाइम किसी को भी करियर में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, डिस्कस करना है, यू कैन रीच आउट टू मी. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. मैं एक मैसेज या एक कॉल के थ्रू हमेशा अवेलेबल रहती हूँ. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. कभी भी आपको क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन है करियर में चूज करने के लिए, यू कैन रीच आउट टू मी, कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो. माई नंबर इज 9137406647.
0: थैंक यू सो मच मैम. बाय मैम. थैंक यू सो मच. लवली टॉकिंग टू यू मैम.
1: ग्रेट. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

बिल्कुल जी, जिंदगी में भी आएंगे और आपके दिलों में भी आएंगे, और जब हम रेडियो पर आते हैं तो बस सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो जाती हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग है जी, कैसे हालचाल हैं? आपने ट्यून इन कर लिया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जुड़ चुके हैं आपके शहर के स्टेशन ऑफ द नेशन पर। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह इस कार्यक्रम में। हम इंतजार है आपके प्यारे संदेशों का। दोस्तों, वक्त हो गया है 8:56, आप जहां भी हैं आपको एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस हमारी भी कोशिश होती है कि सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग को कैसे झकास और बिंदास बनाया जाए, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी महत्वपूर्न वो चर्चाएं जो आपको कहीं और मिले ना मिले, लेकिन आरजे आनंद के शो पे तो आपको डेफिनेटली मिल जाती है। चलिए श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं आज 3 जून को क्या महत्वपूर्ण है, क्या खास है हमारे इतिहास के पन्नों में। तो श्रोताओं, आपको बताते चलें, 3 जून अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख इसलिए बन जाती है क्योंकि आज के दिन कुछ विशेष घटनाएं हैं जो आज के दिन को और भी खास बनाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, सन 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राज्य भाषा मानी गई थी। श्रोताओं, आज ही के दिन आपको बता दें, भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया था 1994 में आज ही के दिन 3 जून को। आपको बता दें, फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन जो है दोहराया सन 2005 में आज ही के दिन। और आज ही के दिन कुछ खास लोगों का जन्म भी हुआ था, जिनमें से एक नाम है रूमा पाल, भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही। 1941 में इनका जन्म हुआ था। श्रोताओं, आज ही के दिन 1982 में तृप्ति जी का जन्म हुआ, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो एकल और युगल खेलती हैं। श्रोताओं, आज के दिन इनका भी जन्म हुआ था। और आज का दिन और भी तमाम महत्वपूर्ण बातों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही पॉपुलर है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप जुड़ते हैं आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे। श्रोताओं, ये थी आज के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ साझा करी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आपको बता दें, ऐसे हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं साझा करते हैं ताकि आपका दिन और भी खूबसूरत हो जाए। श्रोताओं, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें, अभी हम लौट कर आएंगे तो कुछ खास चीज़ों पर आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी शो पे, क्योंकि ये है मॉर्निंग मैगजीन शो। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग के संदेश लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपके संदेश को हम इस प्रोग्राम में

जरूर शामिल करेंगे। बस आप थोड़ा सा हमें जो है समय दीजिए, हम अभी लौट कर आते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे और ऐसे ही बेहतरीन गानों के लिए आरजे आनंद को सुनते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, कुछ गीत ना हमारे दिल में ऐसे बस जाते हैं, मतलब जिनको हम भुलाकर भी नहीं भुला सकते हैं ना, चाहकर भी नहीं भुला सकते। अगर मैं गलत नहीं कहूँगा तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि कुछ गीत संगीत के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि वो इतने अच्छे होते हैं ना, उनके बारे में आप शब्द आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे यार, इतने प्यारे गीत होते हैं। और वैसे ही जोकला गाना मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ कि भी बहुत प्यारा है। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत ट्रैक इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़िए ना, 9837896896 किसने मना किया है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। कभी कभी जुबान से वो शब्द निकल जाते हैं जो आप बोलना नहीं चाहते हैं, क्या करें, जुबान है ना, फिसल ही जाती है। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग है जी, स्टूडियो की घड़ी में 9:02 हो गए हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
8: जी बिल्कुल, आप सही स्टेशन पर हैं जहाँ बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है, और कभी कभी हम भी आपके साथ वो बातें कर लेते हैं जिसमें आपको नहीं हमें भी खुशी मिलती है यार। हाय, गुड मॉर्निंग है जी, कैसे हालचाल है? यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो सुन रहे हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वेंसडे की सुबह, कनेक्शन वही जो दिल से दिल तक जोड़ दे। किसी का बर्थडे है आज, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, या कोई बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी चीज आपके आसपास चल रही है, तो बिल्कुल जी आप उसे मेरे साथ साझा कर सकते हैं। किसी दोस्त का बर्थडे है तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं उसका नंबर, और उसको हम एक देंगे बढ़िया सरप्राइज। फिलहाल मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9837896896। और अभी बात कर लेते हैं मौसम, चाचा की क्या कह रहे हैं आज का ये मौसम। भैया मौसम क्या कह रहे हो, जरा मौसम पे एक नजर डाल लेते हैं। मुरादाबादियों, आज का वेदर बताना आपको बहुत जरूरी है। तो भैया अभी फिलहाल तो 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है मेरे को, यानी कि जो अभी करंट टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, अभी ये मिनिमम है, और मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है 36 तक ये पहुँच सकता है। आपने अपना ख्याल रखना है, गर्मी से तो आपने बचना ही बचना है, और साथ ही साथ अपने जो है भाई साहब आसपास जो पक्षी है ना उनका भी ख्याल रखना है। उनके लिए छोटी सी मिट्टी के पात्र में आप पानी भर के जरूर रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी हवा की अगर मैं बात करूँ, आज की हवाएं जो है बढ़िया अच्छी खासी रफ्तार के साथ आपको जो है मिलने वाली है, यानी कि हवा जो है काफ़ी तेज चलेगी। हल्की फुल्की हवाएं तो अभी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं जो है आप तेज़ी से आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा हवाएं भी बढ़ेंगी धीरे धीरे। बाकी एयर क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही है आज की सुबह। चलिए कोई नहीं, बाकी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकलो यार, बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखना, प्रोटेक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बहुत सारे श्रोता साथी जुड़े हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजिया। हाय, गुड मॉर्निंग जी, और ये हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रजिया सैफी, लिखती हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? आई एम वेरी गुड, आई होप आप भी अच्छे होंगे। मेरे साथ एक और प्यारे से मित्र जुड़े हैं, हाय गुड मॉर्निंग जी, ये उस्मान जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ ग्राम बीजना से, एंड डॉक्टर सैयद शारी के लिए भी जुड़े हैं आज की सुबह करूला आजाद नगर मुरादाबाद से, लिखते हैं वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रिय मित्र जोन रोजी पलविलिस, ये जुड़े हैं हमारे साथ सहारनपुर से, लिखते हैं जिंदगी की कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, मतलब दोनों की चुकानी पड़ती है, लिखते हैं बोलने की भी और चुप रहने की भी, 100% आई एग्री विद यू। साथ में लिखते हैं आनंद जी सुप्रभात, रिश्ते कभी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं, रिश्ते तो वो हमेशा सच्चाई हमारी और आपके द्वारा जो समय हमने बिताया है एक अच्छे और सच्चाई के साथ और एक सम्मान के साथ, रिश्ते उस पर निर्भर होते हैं। बात तो वैसे आपने सही की है, थैंक यू सो मच, ये वेंसडे है, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। और रिश्तों में आजकल ना जो एक ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। रिहाना मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग जी। इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे श्रोता जुड़ चुके हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। आज क्या स्पेशल है नेशनल इंटरनेशनल डे में, मुरादाबाद में क्या चल रहा है, ये भी कड़क अपडेट आपको मिलेगी मेरे चैनल पर, इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन गाना भी तो आपको मिलना चाहिए जिससे आपकी सुबह हो जाएगी और भी बिंदास और भी झकास। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद, एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये वो गाना है जो आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा यार, मतलब ओरिजिनल वाला गाना प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह, ओरिजिनल गाना, दैट इज वेरी अमेजिंग। ओरिजिनल की बात ही अलग होती है ना, उसके बाद में फिर आप उसके कितने भी सीक्वल्स बना डालो, नो मैटर यार, जो वाइब आपको ओरिजिनल में मिलती है ना उसकी फील ही अलग होती है। वेंसडे की मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो।

0: Your voice, I am singing song. Soup song. Flop song.
1: मैं एक्चुअली ना आज की सुबह स्लिप ले कर रहा हूँ। इस गाने को सुन के ना आप फ्लैश बैक में जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, ये गाने का ना मेरे को आज तक मतलब नहीं पता, बस मैं गाता रहता हूँ साथ में। धनुष क्या लग रहा है इस गाने
2: का?
1: आप अपनी चाय पीते रहो, गाने सुनो यार।

क्या गाना था यार ये, मतलब मजा आ गया मेरे को सुन के। टू बी ऑनेस्ट यार, गाना फुल ऑन वाइब देता है, जो भी बोलो यार, समझ में आए ना आए। कुछ गाने ऐसे होते हैं यार, डजंट मैटर वो समझ में आना है, लेकिन उनको म्यूजिक और उनके लिरिक्स बड़े कमाल के होते हैं यार। वेलकम बैक जी, सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है, कैसे हाल चाल है? ढेर सारे मैसेजेस पहुंच गए हैं आपके, थैंक यू सो मच। ये बुधवार की सुबह है एंड मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें मैंने बोला कि आज वेंसडे है, मैं ग्रीन पहन के आया। ढेर सारे लोग कमेंट कर रहे हैं यार, ये तो येलो भाई फिल्टर का कमाल है। बच्ची फिल्टर का कमाल है, कभी कभी होता है ना कि इंस्टाग्राम पे एक तो इतने सारे फिल्टर्स आ गए ना, सो मेनी फिल्टर जी, अब समझ नहीं आता कौन सा फिल्टर कहीं को जमता, मेरे को भी नहीं पता। मेरे को जो अच्छा लगता मैं चेप देता। वैसे आप भी यूज करते तो होंगे यार, आजकल जिंदगी फिल्टर पे चल रही है यार, मैं इंस्टाग्राम फिल्टर की बात करूं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग है यार, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। 9:16 हो गए स्टूडियो की घड़ी में, और अगर आप गाड़ी में आ गए हैं, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 जून वेंसडे है और आज नेशनल एग डे मनाया जाता है, यानी कि भैया जो राष्ट्रीय अंडा दिवस है उसको आज सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग अंडे शंडे खाने में बड़ा बिलीव करते हैं कि भैया नहीं अंडे खाने, वैसे अंडा खा सकते हैं यार, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ऑफकोर्स अंडा खाना अच्छा होता है यार। इसके अलावा आज एक बहुत ही स्पेशल दिवस और मनाया जा रहा है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था अभी थोड़े टाइम पहले, इवन बहुत सारे लोग उस पर नजर भी आए थे। किस चीज की बात करूं, डेफिनेटली अभी आपको बताऊंगा। एंड बहुत ही स्पेशल डे है, अगर आप इसको यू नो इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होता है यार। और आज ग्लोबल रनिंग डे भी मनाया जाता है, जो लोग दौड़ के बड़े शौकीन हैं, जो लोग दौड़ना बहुत पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल डे है ग्लोबल रनिंग डे। स्पेशली ये जो दिन है बहुत ही खास है, मुझे लगता है कि हर इंसान को जिंदगी में जो है दौड़ना चाहिए। क्या कह रहे हो आनंद, डेली दौड़ते हैं यार, सुबह से लेकर रात तक दौड़ते ही रहते हैं मेरे भाई। हाँ तो लेकिन अगर आप सुबह सुबह दौड़ते हैं ना तो ये बहुत ही बढ़िया होता है, अभी बताऊंगा कैसे थोड़ी सी देर में जब हम अभी आएंगे तो उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी कुछ और खास चर्चाएं कर लेते हैं फटाफट से आप ही के स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 3 जून को अपने आप में बहुत सारे दिन हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ ऐसे दिवस हैं जिनके बारे में बात करना तो डेफिनेटली बनता है आज की मॉर्निंग। एंड आप लोगों की जो मैसेज आए हैं उसके लिए भी आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा भी कर देंगे, क्योंकि ऐसे होते हैं ना, मैं सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और अभी बात करते हैं, भारत में ना मोटापा बहुत बढ़ रहा है, यस ऑफकोर्स भारतीय लोगों में मोटापे लगातार बढ़ रहा है और मोटापे से तमाम लोग शिकार हो रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में ये जो मामला है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ जीवन शैली में बदलाव के कारण वजन तेजी से बढ़ रहा है और ये एक चिंताजनक विषय बन गया है, क्योंकि अधिक वजन कई बहुत सारे ऐसे कई बीमारियों को जो है जन्म देता है, बहुत सारे संक्रमण रोगों को जो है जन्म देता है। इसीलिए जो है ये भाई साहब खतरे की घंटी है, जो वेट बढ़ रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, भारत में जो मोटापे की समस्या वो लगातार बढ़ रही है, स्पेशली शहरों में रहने वाले पुरुष और महिलाओं में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोटापे की दरें अगर मैं बताऊं तो भाई साहब महिलाओं में कुछ ज़्यादा है, पुरुषों में थोड़ी कम है, फिर जो यंग बच्चे हैं उनमें उससे भी कम है, अगर यंग गर्ल्स की बात करें उसमें भी, और यंग बॉयज में भी, मतलब बॉयज़ में थोड़ा कम है, महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा है। तो भाई साहब ये जो मोटापे का कारण है ना, ये कहीं ना कहीं ढेर सारी जैसे मैंने बताया बीमारियों को भी जन्म देता है, तो भैया उसके लिए आपने ज़रा संभल के रहना है। अगर मैं बात करूँ शहरी एरिया की तो वहाँ पर 42% दिखा रहा है कि भाई मोटापे के शिकार हो रहे हैं लोग, वहीं ग्रामीण एरिया में 25% लोग हैं जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का स्कोर निकल कर आया है जहाँ पर आंकड़े बताते हैं कि 26.7% लोग हैं जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं। वहीं बात करेंगे पंजाब की तो 44.7% लोग हैं जो मोटापे से जूझ रहे हैं। तमाम सारे ऐसे अलग अलग एरियाज के जो है रिसर्च निकल कर आए हैं जिसमें पता चल रहा है कि मोटापे में कितने लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। वो कहते हैं ना एक जो फैट होता है वो अलग, और ये जो मोटापा है ना भाई, अगर आपने इससे बचना है तो आपने अपनी कुछ चीज़ों में जो है चेंज करना है, और अगर आप ये करते हैं

तो बहुत ही बढ़िया। अभी इस पर डेफिनेटली चर्चा करेंगे विस्तार से, और बाकी आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, पूरे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भैया कल से हम एक इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल 10% बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बताया जा रहा है कि जून की बिजली के बिल में 10% एडिशनल चार्ज जोड़कर बिजली का बिल मतलब जो है वसूलना चाहते थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 10% नहीं बढ़ेगा बिजली का बिल, यानी कि यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस पर रोक है, अब देखते हैं भाई साहब जब बिल आएगा तो पता चलेगा। बहुत सब इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के एसी चला रहे हो यार, फिर आप कह रहे हो कि यार इतना बिल आ रहा है, तो वो कंपलसरी है ना बाबा, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा ही होगा ना। चलिए अब हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हमारे आसपास में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या कुछ बढ़िया से चल रहा है हमारे मुरादाबाद में, तो बिल्कुल आप हमें पहुंचा सकते हैं 9837896896। भैया आपने उत्तर प्रदेश के एक एरिया में ना बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है जिसको सुनकर आप भी ना बहुत चक्के रह जाएंगे यार कि ये क्या हो गया यार। इससे पहले जरा मैं क्रिकेट फैंस के लिए बता दूं, 6 जून से शुरू होगा भारत अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच। अगर आप लोग मैच को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग अब समाप्त हो चुका है, लेकिन क्रिकेट का रोमांचक जो एक अंदाज है वो तो भाई साहब है निराला, पर मुझे लगता है कि ये जो रोमांच है कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए यार, है ना। जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए तो एक अलग ही वाइब है यार क्रिकेट। आपको बता दें आईपीएल 2026 के बाद अब इंडियन अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है और ये मुकाबला 6 जून से शुरू होने जा रहा है। आईपीएल खत्म होने के हफ्ते भर के अंदर ही ये मुकाबला होने वाला है। और आपको बता दें भारत अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला लगभग 8 साल के बाद होने जा रहा है। साथ ही टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेली जाएंगी। अफगानिस्तान की टीम इस वक्त भारत के दौरे पर है। चलिए श्रोताओं ये थी क्रिकेट से जुड़ी खास बात, अभी कुछ खास बातों पर मुझे भी चर्चा करनी है। इसे तमाम सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, इसी जहां पर बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। आपने बहुत सारे संदेश पहुंचा दिए हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अभी लौट कर आएंगे तो आपकी मैसेज को डेफिनेटली शामिल करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बाकी हम तो आपसे भी कहना चाहते हैं अगर आप भी हमारे साथ इस कड़ी में श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए ना 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा गाना आपके लिए निकाल दिया मैंने आज की सुबह, भाग मिल्खा भाग से ग्लोबली रनिंग डे मनाए जाते हैं, इस पे भी बात करते हैं। डॉक्टर आ रहा हूं ना, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन आप भी भाग रहे हैं ऑफिस के लिए, भागते नहीं है लेकिन थोड़ा संभल के सीट बेल्ट लगा लिया आपने, वेरी गुड, कहीं जाम वाम तो नहीं है, आप मुझे अपडेट कर सकते हैं 9837896896 पर, आप ही का नंबर है यार।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: गजब का गाना है यार, गजब का सॉन्ग, मतलब आपको एकदम अलग ही स्वाग दे देगा ये वो गाना है। चलो जी, अभी आप एंजॉय कर रहे थे बेहतरीन गाना, आरजे आनंद की एंट्री हो गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। आज आप सभी को पता है 3 जून है, और हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड साइकिल डे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि सारे लोग साइकिल पर नजर आ रहे थे, बड़े बड़े अधिकारी, नेता अभिनेता सब साइकिल चलाते हुए नजर आए थे। और आज का ये दिन है जब हम साइकिल को जो है मतलब कह सकते हैं कि एक अपनी फ्लैशबैक में चले जाते हैं, मेमोरी में चले जाते हैं। अलग ही साइकिल को हम हमेशा अपने दिल के बड़े करीब मानते हैं, बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है साइकिल्स के साथ हमारी, हम लोगों की। और इसी को लेके मुरादाबाद में बहुत ही अच्छा कैंपेन भी होने वाला है दिस संडे। क्या होने वाला है डेफिनेटली आपको पता लगेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यानी यूएन ने अप्रैल 2018 में इस दिवस को मनाने की जो है आधारिक तौर पर घोषणा की थी श्रोताओं, और इसे मनाने के प्रमुख कारण और लाभ निम्नलिखित है। मतलब इसके बारे में तो शायद मैं जितनी बातें करूँ वो कम ही कम होंगी। ऑफकोर्स आपको भी पता है साइकिल चलाने के बड़े सारे एडवांटेज है यार। देखिये पर्यावरण जो है एकदम बढ़िया और बेहतरीन रहता है, साइकिल मतलब जो है बहुत ही बेहतरीन जो है मानी जाती है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी हेल्थ भी बढ़िया होती है और हमारा पर्यावरण भी बहुत अच्छा रहता है। स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन है जिससे मतलब प्रदूषण कम होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है साइकिल। अगर आप चलाते हैं नियमित रूप से साइकिलिंग अगर आप करते हैं तो यह आपके हृदय को मजबूत बनाती है, आपका वजन नियंत्रण रखने में काफी हेल्प होती है, और आप मानसिक तनाव भी आपका जो है वो कम होता है। तो देखिए काफी बढ़िया है ये साइकिल वाला फंडा। देखिए एक तो ये यात्रा एकदम आपकी सस्ती रखती है, मतलब अगर आपको आसपास में कहीं जाना है तो एकदम सस्ती सी यात्रा, टिकाऊ साधन है और एक बहुत ही बढ़िया जो है कह सकते हैं कि साधन है आपकी फिटनेस के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी। तो भैया आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, अगर आज की सुबह आप साइकिल पर निकल रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले यार, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे और भी एडवांटेज हैं साइकिल के, लेकिन फिलहाल अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। लेकिन अभी हम बता रहे थे आपको आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है हर साल 3 जून को। श्रोताओं आपकी कोई साइकिल से जुड़ी मेमोरी है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा 9837896896 पे व्हाट्सएप करके। ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस के लिए। पल्लवी झा मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, लिखती हैं हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपके प्रोग्राम से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइन पार में रहती हूँ और आपको मैसेज कम कर पाती हूँ, लेकिन रेगुलरली आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, थैंक यू सो मच। हमारे साथ दीपक कपूर जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग जी, मानसरोवर से मैसेज कर रहा हूँ सर, और आपका रेडियो सुन रहा हूँ, साथ ही साथ अपनी शॉप भी चलाता हूँ, आई एम ए शॉपकीपर, वेरी नाइस सर। एक मैसेज और आ गया है, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुभाष, हाय सुभाष जी गुड मॉर्निंग। सुभाष जी ने मुझे लिखा है आनंद जी सुबह सुबह आपका रेडियो सुनते हैं तो बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ जो है हमारी सुबह की शुरुआत होती है, आपका दिल से शुक्रिया, क्या बात है। हाय गुड मॉर्निंग सर, मैं गर्मा गर्म जलेबी बना रहा हूँ, प्रकाश नगर पे मेरा स्टॉल लगता है, ऑल राइट, माय नेम इज संजीव, आप कभी आइएगा। अरे सर जरूर जरूर डेफिनेटली। एक और मैसेज पहुंच गया मेरे पास, हेलो जी नमस्ते गुड मॉर्निंग, मैं कपूर कंपनी के पास में ही रहता हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है जी, शुक्रिया। श्रोताओं 9:36 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में, आप इस वक्त आनंद के साथ हैं और बातें ऑफकोर्स वही हो रही हैं जो आपका दिल चाह रहा है, और मैं आपको वो जानकारियां दे रहा हूं जिससे आपकी सुबह और भी अल्टीमेट हो रही है। आज वेंसडे की सुबह है, एक वॉइस नोट आया है, हमारे प्यारे रेगुलर श्रोता का जरा सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं भूपी शर्मा नगर पंचायत का आज सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, रेडियो बजाते रहो गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, हुस्न ढल गया गुरूर अभी बाकी है, नशा उतर गया सुरूर अभी बाकी है, जवानी ने दस्तक दी और चली भी गई, जहन में वही फितूर अभी बाकी है, क्योंकि जिंदा रहना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र की ऐसी की तैसी मन उड़ता परिंदा रखिए, कि जिंदगी जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझिए कि वह जबरदस्ती जिंदा है। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद, भेजते रहिए अच्छे अच्छे SMS नंबर 98-378-96-896। जी हाँ, वही नंबर जो आपकी आवाज़ को, आपके मैसेज को पहुँचाएगा शहर तक और सारे देश तक। नमस्कार, राधे राधे।
0: थैंक यू भूपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत मैसेज के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने वो मस्ती वाला जो अभी एक प्यारी सी बात आपने कही, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत ही प्यारी बात। थैंक यू सो मच श्रोताओं, आप भी ऐसे सुंदर मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं 9837-896-896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। मुझे लगता नहीं है कि मुझे नंबर दोहराने की जरूरत है, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। और आप इंतजार कर रहे हैं एक सवाल का, तो ऑफकोर्स पहुंचेगा आप तक, क्योंकि उससे पहले बहुत ही प्यारा गाना, दीप मणि की आवाज, एब्सोल्यूट अल्टीमेट सॉन्ग, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा ये गाना, आप इसको सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। शायद आपने पहले सुना हो, यानी आई डोंट नो, लेकिन आई लव दिस ट्रैक। अगर आप ये सॉन्ग देखोगे तो इसमें आपको एक चीज नोटिस करनी कि जो भाई साहब इन्होंने कपड़े कितनी बार चेंज किए ना, आप थक जाओगे गिनते गिनते। एक दिन मैं खाली बैठा था, मैंने यही किया, मैं गाना देख रहा था, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट यार, तो मैंने कहा देखता हूँ इस गाने में कितनी बार कॉस्ट्यूम चेंज, और भाई साहब अनगिनत बार।

0: अली, आपके पीछे कोई गड्डी चल रही है इसका ख्याल आपने रखना है, बाकी आपकी गड्डी में अगर आप बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगा के आपने जाना है। चलो ये गाना सुनेंगे और इसके बाद लौट कर आते हैं। तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, मोटापे के बड़े सारे लोग शिकार होते जा रहे हैं, और कुछ मैंने आपको संख्याओं में भी बताए थे कि रिसर्च में पता लगा कि कौन से एरिया में कितने लोग शिकार हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है, इस पे जरूर हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है 9:36, आप आनंद के साथ हैं जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
7: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
5: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
7: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।

क्या बात है यार, बेहतरीन गाना। और ऐसे बेहतरीन गाने सुन के तो सुबह अच्छी हो जाती है। करारा भी आपने एंजॉय किया, सटे तो मिला कदे नाल अखियां। बस यार, मैं इतना ही गा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं गा पाऊंगा बॉस।

0: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी फिलहाल थोड़ी सी ना आपकी हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत जरूरी है, सही जानकारी जब तक इंसान को नहीं होती ना तब तक चीजें गड़बड़ होती रहती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बढ़ते हुए मोटापे के बारे में बात करी कि भैया मोटापा बढ़ती हुई समस्या और इसके कुछ चीजें हैं जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता लग जाएंगी। क्या आपको पता है कि आज हर चार में से एक व्यक्ति जो है बढ़ते वजन की समस्या से जूझ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये चीज़ होता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में जन्म ले सकती हैं। लेकिन अभी मुख्य पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, वजन क्यों बढ़ रहा है, क्या चीज़ें जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। देखिए घंटों बैठकर काम करना, आजकल ये तो बड़ा हो गया ना, एक लंबे समय तक बैठे रहना एक ही जगह पर उस पर काम करना, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न बन सकता है। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात कि हम नींद कम लेते हैं, मोबाइल ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, इसी वजह से हमें लगता है कि नहीं 4-5 घंटे सो लिए सफिशियंट है, बट आई थिंक इट्स नॉट मोर देन इनफ, है ना। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शारीरिक गतिविधियाँ थोड़ी कम हो गई हैं। और मैं आपको सच बताऊँ तो अगर मोटापे के शिकार कोई हो रहा है ना बॉस, तो उसको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर जो है ये बढ़ सकता है आपका, है ना, हाई ब्लड प्रेशर एंड साथ ही साथ दिल की बीमारियां, घुटनों में दर्द, कॉन्फिडेंस में कमी डेफिनेटली आने लगती है यार। मोटापे से बचने के कुछ तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे रोज 30 मिनट अगर आप तेज चलते हैं, वॉक करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया, लिफ्ट की जगह अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही वेरी गुड, एंड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऑफकोर्स यार गर्मियाँ चल रही हैं तो पानी तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना ही है, जंक फूड की क्वान्टिटी आपने कम कर देनी है, जितना हो सकता है जंक फूड बाहर का जो खाना पीना है उसको जितना आप कम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए। घर का बना फ्रेश ताज़ा बढ़िया साफ सुथरा खाना आप खाएंगे तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आप हरे पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट्स, सीजनी फल, इनको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। 7-8 घंटे की पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, 2-3 लीटर पानी डेली पीजिए, सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ कीजिए। अगर आप साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप साइकिलिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपको योगा प्राणायाम कपालभाति करने में बहुत अच्छा लगता है, आप मेडिटेशन कर पाते हैं, जो भी आपके हिसाब से आपको कन्वीनियंट लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं। और खाने की प्लेट में देखिए आप सैलेड को ज़रूर हिस्सा बनाएं, बहुत ज़रूरी है सलाद खाना, हम खाना पीना तो खाते हैं लेकिन सैलेड कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो श्रोताओं इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच पाएंगे, मोटापे से तो आप डेफिनेटली बच पाएंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही मुस्कुराते हुए जो है अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हुए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं तो ये भी बहुत ही बेहतर होता है आपकी हेल्थ के लिए। कहते हैं ना मुस्कान तो है ही सबसे बेस्ट मेडिसिन, है ना, तो बस मुस्कुराते हुए अपने सफ़र की शुरुआत कीजिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वेंसडे की सुबह है जहाँ बातें हो रही हैं दिल से दिल तक आरजी आनंद के साथ, और तमाम सारी वो बातें भी होती हैं जो आप मुझ तक पहुँचाते हैं। विक्की सागर जी जुड़ चुके हैं रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे साथ एक और प्यारी मित्र जुड़ी है, हाय गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सुनीता जी का मैसेज मेरे पास पहुंचा है, और भी हमारे ढेर सारे श्रोता साथी हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वक्त हो गया है 9:47 और ऐसे में अब एक सवाल आपसे पूछने का मन कर रहा है, अगर हम ये आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। तो एक ब्यूटिफुल सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हूँ आज की सुबह, फटाफट से आपने इस गाने को आइडेंटिफाई करना है, अगर आप देंगे इसका जवाब तो आप आज की सुबह आप बन सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा, यानी कि आप बन जाएंगे मेरे शो के विनर। अगर आपको हमारे शो के विनर बनना है, यानी कि ये खिताब आपने जीतना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, बस आपको एक छोटे से मेरे सवाल का आंसर देना है, अगर आपने दिया सही जवाब तो ये चांस आज की सुबह आप विन कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाइए और ज़रा पहचानिए ये कौन सा गाना आनंद प्ले कर रहा है, अगर आपने इस गाने को आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा जी आज की सुबह। तो ये लीजिए जरा पहचानिए कौन सा गाना है ये। व्हाट्सएप करना है आपको अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाना है, अपना फोन टाइप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। ये मैडम क्या कह रही है यही आपने मेरे को बताना है मैसेज करके, ठीक है जी। तो इंतजार रहेगा मुझे आपके मैसेजेस का, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आप हैं आनंद के साथ। आपके मॉर्निंग को रिचार्ज बनाने के लिए अच्छे गाने लेकर आता हूँ आनंद राज। आनंद का ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी नो प्रॉब्लम से निकाल दिया है मैंने,
1: चौड़ी चेस्ट
0: ऑल टाइम फेवरेट है जी। चलो जी, इसी की सुनती हुई आगे बढ़ेंगे। गुड

0: Que essas
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
4: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: क्या मेरी कसम
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
7: बिंदास मॉर्निंग
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
8: तो उन्होंने जब साहब का ये ओल्ड वर्जन जिसको सुन के आप भी फ्लैश बैक में चले जाओगे, काफी ढिंचैक नंबर है। ओल्ड इज गोल्ड यार, किसी ने क्या खूब कहा है, पुराने गानों की ना वाइब अलग होती है यार। क्या सॉन्ग है, एंजॉय करो मेरे साथ।

0: क्या गा रहे हैं, व्हाट अ सॉन्ग यार।
1: कुछ पे ही मरता है नाम तेरे, करता है सारी उमरिया,
0: क्या गाना है। वेंसडे की सुबह ऐसे बेहतरीन गानों से आपकी मॉर्निंग होती है रिचार्ज। और ये गाने प्ले करता है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो।

भाई साहब 10 बजने को है स्टूडियो की घड़ी में आनंद के साथ है आप लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल सुन रहे हैं आपके शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन। आगे बढ़ते हैं और अभी हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं पाजी, जरा ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लो यार, बहुत ही बढ़िया। आज 3 जून की सुबह है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, ये दिवस मैंने आपको बताया हर साल 3 जून को ही मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना। साइकिल एक पर्यावरण अनुकूल और किफायती कह सकते हैं कि परिवहन साधन है। और आपको बताते चलें, नियमित साइकिल चलाने से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था, तो आज जो है वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। अगर आप साइकिल चलाने के शौकीन हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है यार। और साइकिल से हमारी जो यादें हैं ना वो बहुत ही बढ़िया, मतलब साइकिल से गिर गिर के जो उठे हैं ना बॉस, क्या ही बताऊँ यार। मैंने तो भैया वो अपने स्कूल टाइम में ना, मतलब साइकिल हम जाते थे बच्चों के साथ सीखने, बहुत चोट खाई यार, लेकिन साइकिल के साथ जो मेमोरी है, जो कनेक्शन है, वो एकदम अलग लेवल पे है यार। फिलहाल आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना आपकी साइकिल से जुड़ी कौन सी मेमोरी है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। ऑफिशियल आईडी मिलेगी एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से, जहाँ बातें वही वाली होती हैं जो आपका दिल चाहता है, वहाँ भी कुछ ना कुछ स्पेशल आपके लिए चलता रहता है। बॉस, आज की सुबह मैंने आपसे पूछा एक बहुत ही बढ़िया कड़क सवाल, मुद्दे की बात पे आते हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है जी। हाँ, लास्ट मौका है आपके पास, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे नंबर पे 9837896896। ये गाना जो है कौन सा है, ये मैडम क्या कहना चाह रही है। यस, अब जो है आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, अब तो आपने मेरे को मैसेज कर ही देना है 9837896896। आज वेंसडे की सुबह बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जी। चलो मैसेज करने का मेरे को, ठीक है मैं अभी लौट कर आता हूँ फटाफट से, और उसके बाद बताऊंगा कौन है आज के मेरे शो का लकी वाला विनर। फिर आपसे लेंगे जाने की इजाजत, क्योंकि कोई और भी है जो आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे और भी सुपर डुपर अमेजिंग, तो भाई अभी अब उनको जाना पड़ेगा यार, जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे वापस, है ना। फिलहाल तो नहीं जा रहा हूँ, अभी हूँ आपके साथ, वक्त मिला लो, 10:02 हो रहे हैं, जो भी निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पूरी करने उनको ऑल द वेरी बेस्ट।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
8: आनंद के साथ हैं आप और फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया है। श्रोताओं, जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, है ना। लेकिन बस मैं जाते जाते आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप मुस्कुराते रहें, ऐसे ही गुनगुनाते रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखो यार, बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी के साथ खुद को जब आगे बढ़ाते हैं तो उसकी वाइब अलग होती है। 10:08 हो रहे हैं। कौन है आज के शो का लकी विनर बताता हूँ अभी जरा सी देर में आपको बता दूं। भैया, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ही अजीब गरीब मामले सामने आया है। 5-स्टार होटल में 41,000 का डिनर का बिल बन चुका और उसके बाद फरार हो गए ये फ्रेंड्स। वैसा मतलब अनबिलीवेबल, 41,000 रुपीज का इन्होंने डिनर किया यार। पता नहीं ऐसे डिनर में इन्होंने क्या खा लिया। अपने उत्तर प्रदेश का एक फेमस शहर जहां पर ये लोग गए थे घूमने के लिए, भाई लग्जरी होटल में गए, उसके बाद यहां पर चार जो है फ्रेंड्स ने मिलकर खाना खाया जिसका बिल 41,000 रुपीज का आया, है ना। उसके बाद ये बिना बिल चुका ही फरार हो गए। बताइए, उनके तो तोते उड़ गया। एक तो समझ में नहीं आया डिनर में इन्होंने लिया क्या और इतने बड़े 5-स्टार होटल में बिना बिल पे किए जाने कैसे दिया होगा इनको यार। आई डोंट नो, लेकिन यार बड़े अजीब गरीब किस्से सामने आते हैं यार। भाई हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी से एक कप शिकंजी भी पीने जा रहे हो ना बाजी और आपको लग रहा है कि भैया वो बहुत मेहनत से बना रहे, तो उसको दीजिए यार, वो डिजर्व करता है, ये नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आनंद के साथ हैं आप। गुड मॉर्निंग।

0: बढ़िया गाना हाउसफुल का वाला जो था, मतलब कमाल का गाना था यार ये। इसको सुन के मतलब मजा आ जाता है। अक्षय कुमार एक अलग ही अंदाज में नजर आए, हाउसफुल फू का गाना अभी आपने एंजॉय किया। आगे बढ़ते हुए आपको कहना चाहते हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुबह बहुत खूबसूरत है। और सुबह में कहते हैं दोस्तों आपको ना वो ताजगी मिलती है हर सुबह जो आप महसूस करते हैं, बस जरूरत है उस महसूस को अपने अंदर और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ जो है सही जगह देने की। जब आप अच्छी सोच के साथ अपने दिन की और सुबह की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा होता है, पूरा दिन एनर्जेटिक होता है आपके लिए। और जब आनंद को सुनते हैं तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है। चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ मैंने आज आपसे बहुत ही सिंपल कड़क क्वेश्चन पूछा था, आपने बस आइडेंटिफाई करना था। एक बहुत ही प्यारा गाना मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने कहा था आप मेरे को मैसेज करके बताना है जो मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, जो मैं गाना चला रहा हूँ, छोटा सा गाने का बीच का पार्ट था, वो कौन से गाने का पार्ट था और वो मोहतरमा क्या कह रही थी, यही मैं आज की सुबह आपसे जानकारी ले रहा था। और तमाम सारे श्रोताओं ने जो है हमारे साथ मैसेज पे पार्टिसिपेट किया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्या पूछा था सुनाएं आपको, कौन जुड़ी है बताने के लिए? नमस्ते जी, नाम बताएं अपना। गुड मॉर्निंग
1: सर, मेरा नाम सबीना खान है।
0: जी सबीना खान जी, आप कैसी हैं पहले तो ये बताइए।
1: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबीना खान जी कहाँ से जुड़ी हैं और क्या करती हैं जरा ये बताएं।
1: जी सर मैं रहमत नगर गली नंबर 1 से बात कर रही हूँ।
0: ओके,
1: और मैं ग्रेजुएशन तो कर चुकी हूँ, अभी फिलहाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ।
0: अरे वाह बहुत ही बढ़िया, चलिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जी शबीना जी, रेडियो से कब से जुड़ी हैं, क्या अच्छा लगता है मुरादाबाद रेडियो स्टेशन में आपको?
1: सर आप जब भी आते हैं तो माहौल ही अलग हो जाता है, और खुशी मैम और रीना मैम
0: जी जी
1: कोई सुनते हैं, हमारे परिवार में सब बहुत शौक से सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
0: क्या बात है,
1: और ये बहुत सालों से मतलब बहुत पहले से ही हम जुड़े हैं रेडियो से, खासकर पापा तो बहुत शौक से सुनते हैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रेडियो से क्या चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, क्या मतलब आपको खास लगाव है, क्यों आप रेडियो सुनते हैं अभी भी?
1: मतलब टेंशन या कुछ भी होता है मगर जब भी रेडियो सुनते हैं तो मतलब बहुत अच्छा मतलब
0: अच्छा
1: फील होता है, भूल जाते हैं
0: थोड़ी देर के लिए, लगता है एक नई दुनिया में आ गए हैं ना।
1: जी सर आज आपने मुझे कॉल पे लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
0: अरे बाप रे, तो अब
1: मैं सोचा नहीं था कि आप मतलब मुझे कॉल पर लेंगे, मतलब मेरी लग जाएगी कॉल।
0: अरे बाबा, लेकिन अब आपको कॉल लग ही गया है आपका, तो आपको कैसा लग रहा है ये बताओ, आपको यकीन तो करना पड़ेगा।
1: मुझे यकीन ही नहीं आ रहा अभी भी मतलब।
0: नहीं शबीना जी आप लाइव हैं, तमाम लोग आपकी आवाज रेडियो पर सुन रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, और यही रेडियो का कमाल है कि आप सोचते नहीं हो आपके साथ वो सारी चीजें हो जाती हैं, फिर आप पूरा दिन अच्छा अच्छा फील करते हैं। तो आज की सुबह आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं पूरा दिन, है ना?
1: हाँ सर
0: बहुत बढ़िया। अच्छा शबीना जी, मैंने जो वो

0: की जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स सुख दुख आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपको हर सिचुएशन में रहना चाहिए हैप्पी और पॉजिटिव, है ना, यही सिखाता है हमें हर दिन। शबीना जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आई होप आपके घर में भी सब बढ़िया होंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आपसे फिर कभी बात करेंगे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शबीना जी।
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम वेलकम, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय बाय बाय मैम। तो ये जुड़ी थी शबीना खान जी हमारे साथ, इन्होंने दिया सही जवाब, रहमत नगर गली नंबर 1 से इन्होंने बताया। गाइज ऐसे कॉल्स आपको भी आ सकते हैं, बस आप ट्यून रहिएगा ऐसे ही आपके शहर के स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल लेता हूँ अब जाने की अनुमति, 10:15 हो गए भाई। गौरव टेलर जी जुड़े थे नवीन नगर से मेरे साथ आज की सुबह, गौरव जी ने एकदम सही जवाब दिया है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है आनंद भाई, इनको काफी अच्छी लग रही है हमारी इन्फॉर्मेशन। विक्की सागर जी ने सही जवाब दिया था, एंड अर्चित जी हमारे साथ जुड़ गए थे आज की सुबह, एंड साथ में उमा शंकर जी, अवंतिका जी हमारे साथ जुड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड से। एंड आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज पहुंचा था यहाँ पे, हाय गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, निखत फातिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सही जवाब दिया है। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाहद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शेर चारिक अली जी भी जुड़े हैं सही जवाब के साथ। साथ में हमारे पास मैसेज आया था यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है आपके, बहुत ही बढ़िया जी गुड मॉर्निंग। यमुनानगर हरियाणा से यशपाल बिंदल जी जुड़े थे, एंड भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें साझा की हैं आज की सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं श्रोताओं हूँ, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। रिहाना भी मेरे साथ जुड़ी थी सही जवाब के साथ, रानी नांगल से, एंड गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है। हमारे पास मैसेज पहुंचा था चंदन नगर से डीके अरोड़ा जी का, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस लेता हूँ जाने की इजाजत, होगी मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए। किसी का मैसेज छूट गया हो तो माफी चाहेंगे, बाकी के लिए कल मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखिए अपना और ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत करते जाइए। 10:17 हो गए, बाय बाय।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर्स
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
9: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
10: मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
9: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
10: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
9: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपके शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
11: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
9: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, समय हुआ है 10:26। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, वेनेसडे का बुधवार का दिन है। और दोस्तों आज क्या स्पेशल है, देखिए 3 जून की तारीख है। और अपने आप में हर दिन में एवरी डे आपसे एवरी डे बोलती हूँ कि हर दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है। और आज क्या कुछ खास है वो सब आपको पता लगेगा धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा थॉट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सूरज हर सुबह ये संदेश देता है, सूरज हर सुबह ये संदेश देता है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक नई शुरुआत हमेशा आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो इसीलिए दोस्तों जो कल हुआ है उसको भूल जाइए और जो आपके पास आज समय है उसमें आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि एवरी डे आपको नया दिन मिलता है नई शुरुआत करने का, फिर से गिर के उठने का। क्योंकि लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं और कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में मुश्किलें ना ही हों। तो उन मुश्किलों का सामना कीजिए और आज स्पेशल दिन है, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।

और दोस्तों याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन हमारा नजरिया हमेशा हमारे साथ में होता है। इसीलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच, जी हाँ, पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए, जो आप करना चाहते हैं वो सब चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी एंड आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जो आप चाहते हैं सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं अपना नाम आपको बताती हूँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी, लेकर आई हूँ आपके लिए मॉर्निंग मसाला शो, जहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी, कुछ फन भी होगा एंड नई नई एक्टिविटीज भी होंगी। आज क्या स्पेशल है सब आपको मैं बताऊंगी। आपको मेरे साथ बने रहना है, चिपके रहना है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और अपने मैसेज भी हमें पहुंचाने हैं। मोबाइल नंबर है 9837896896। और आज की सुबह आपकी जो बातें होती है ना, सुबह सुबह दोस्तों जो आप मैसेज पहुंचाते हैं, तो सच में हमारा दिन बन जाता है। और एक खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए, अरिजीत सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़, और ये गाना ओए होए दिल को सुकून दे जाएगा।

हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी जुड़वा 2 से एंड अमित मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों, परेशान तो कभी कभी हम भी हो जाते हैं ना जिंदगी में ना दोस्तों, दो चीज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक मैथ का सवाल और दूसरा किसी के दिल का हाल। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन जब ये सिचुएशन आती है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता है मुझे। वादे वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वक्त आपको बताते हैं। तो वक्त हुआ है 10:38 और आज क्या कुछ खास है 3 जून को बताते हैं हम आपको। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हाँ, अपने मैसेज पहुंचाना ना भूलिएगा। हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ। आप परेशान होते हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगते हो, इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि मुस्कुराते रहा कीजिए। और मैसेज के लिए नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और दोस्तों, आज 3 जून की तारीख है और आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस। दोस्तों, साइकिल सिर्फ 2 पहियों की सवारी नहीं होती है, बल्कि ये सेहत, पर्यावरण और सादगी भरे जीवन का खूबसूरत प्रतीक भी है। ये वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, साइकिल हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो ना पेट्रोल की जरूरत होती है, ना प्रदूषण फैलता है और साथ ही हमारी सेहत भी बेहतर रहती है। तो दोस्तों, मुझे आप बताइए कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप साइकिल चलाते हैं।

तो फटाफट से जवाब मुझे पहुंचाइए दोस्तों कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। हाँ, ये आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मोबाइल नंबर है 9837896896। आपने साइकिल तो बहुत ज्यादा चलाई है और बचपन में तो आपने मतलब भरी धूप में, कड़क वाली गर्मी में ना आपने बहुत साइकिलें चलाई हैं और बहुत बड़ी गिरे भी हैं, मैं जानती हूँ आपके बारे में। पर मैं आपसे अभी जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ दोस्तों साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। फटाफट से मैसेज टाइप करो और हम तक पहुँचाओ एंड हम आपके मैसेजों का खूबसूरती से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप अब हमें इंतजार मत करवाइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और यहाँ पर आप सभी के संदेश जो आए हैं ना, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये मैसेज पहुँचाते हैं आदरणीय प्रसारक जी को, हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, और कहते हैं कि आपका तहे दिल से शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। ये मैसेज हमें मिला है आज़ाद नगर लखतर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी जी का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खुशी जी, जय श्री राम, गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपको भी जय श्री राम। कहते हैं आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है एंड जानकारियाँ भी बहुत ही अच्छी होती हैं, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि ऐसे ही हमारा मनोरंजन करती रहें, हमारी प्रभु से यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हाँ, समय समय पर पानी भी पीती रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। पानी की बॉटल मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ और देखिए मैं आपको याद दिलाती हूँ और आप मुझे याद दिला रहे हैं। दिल से थैंक यू कि आप सब भी हमारा ख्याल रखते हैं। और ये कहते हैं कि खुशी जी, आज की सुबह ना हमें एक प्यारा सा गाना सुना दीजिएगा। हवाओं ने ये कहा, क्या कह रही हैं हवाएं, जरा बताओ हमें। चलिए, ये संदेश तो हमने शामिल किया है यहाँ पर गौरव जी का, और ये प्यारा सा ट्रैक भी सुनते हैं। इस गाने पे किस किस ने डांस किया है जरा बताओ, ये भी बताना। हाँ, इस ट्रैक पे आप लोगों ने डांस किया है या नहीं किया है? शादियों में तो बहुत बारी किया है, जानते हैं हम, आप किसी हीरो से कम थोड़ी ना हो। हाँ हाँ, मुस्कुरा रहे हो, चलिए मुस्कुराइए और अपने संदेश भी पहुँचाइए। बताइएगा साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है भाई एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, वक्त हुआ है 10:52। आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक एंजॉय किया और मुझे पता था आप झूम भी रहे थे क्योंकि आप सबका फेवरेट गाना है। एंड इस गाने पे कोई शख्स होगा जिसने परफॉर्म नहीं किया होगा, बट हर इंसान झूमता है। और हवाएं ओए होए होए, नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में प्यारा सा ट्रैक आपने सुना। और दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी पूछा था आपसे कि दोस्तों आप मुझे बताइए साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं, और हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग से खूबसूरत यहाँ पर संदेश आ चुके हैं एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के, तो जल्दी से उनको शामिल करते हैं। क्या क्या पहुँचाते हैं हमारे लिसनर्स, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पहले तो मैं आप सभी के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी एंड आपके इतने प्यारे प्यारे जो मैसेज यहाँ पर आए ना, उनको देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। आई एम सो हैप्पी। अब आप भी हैप्पी हो जाएंगे ना जब आपका मैसेज मैं शामिल करूंगी यहाँ पर। और दोस्तों, आज विश्व साइकिल दिवस है, तो इसी पर मैंने आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताइए साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। और उसी पर हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर मैसेज आए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है, सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाती है, हाय आई एम रिया बत्रा एंड आई एम लाइव इन रामनगर करनाल हरियाणा। एंड ये कहती हैं, मैम मुरादाबाद मैं बुआ जी के पास आई हूँ और मुझे बुआ जी ने मुझसे कहा कि एफएम रेडियो सुनो। मैंने एफएम रेडियो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा एफएम रेडियो सुनकर, मेरा बहुत इंटरटेनमेंट यहाँ पर हुआ है, मुझे को अच्छा लगा। और कहती हैं कि आज साइकिल डे है और हम आज शाम को कंपनी बाग मुरादाबाद साइकिलिंग चलाने के लिए जाएंगे। अरे वाह, साइकिलिंग करने जाओगे आज, बहुत अच्छी बात है, इंजॉय करो रिया। और ये कहती हैं कि साइकिल चलाने से एक्सरसाइज होती है एंड फ्रेश आर मिलती है और पोल्यूशन नहीं होता है एंड हमारी जो हेल्थ है वो भी फिट रहती है। एग्जैक्टली राइट रिया, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, साइकिल चलाने के बहुत सारे फायदे हैं और मैं अभी भी कहती हूँ, बहुत सारे जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं इस समय, उन्होंने कहीं ना कहीं साइकिल को स्किप ही कर दिया है। जब से बाइक आई है, बुलेट आई है, कार आई है, माना आपके पास सब कुछ है, लेकिन साइकिल चलाने का ना एक अलग ही आनंद है। उसमें ना तो हमें पेट्रोल की चिंता होती है कि पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, और ना ही पोल्यूशन होता है। तो कितने सारे देखिए फायदे हैं साइकिल चलाने से। और जब आप साइकिल चलाते हैं तो पैरों की मांसपेशियां भी स्ट्रांग होती हैं। मैं तो बहुत साइकिल चलाती हूँ, सच्ची कह रहे हैं। बचपन में तो मैं बहुत बड़ी गिरी भी हूँ और चोट भी लगी, और उसका निशान अभी भी मेरे हाथ पर है। पर जब भी मैं उस निशान को अपने हैंड्स पर देखती हूँ, तो मुझे वो बचपन वाला टाइम याद आ जाता है कि किस तरह से हमने साइकिल को सीखा है गिर गिर कर, फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा आज चोट लगी कोई बात नहीं, कल तो हम पक्का सीख ही जाएंगे। आपने भी ऐसा किया है ना साथियों? हाँ, देखिए स्टार्टिंग में हर किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि चाहे लाइफ में साइकिल चलाना हो या लाइफ को, ज़िंदगी को चलाना हो, मुश्किलें हर जगह आती हैं। डिपेंड करता है कि आप उन मुश्किलों से हार नहीं मानते, उन मुश्किलों से सीखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि मुश्किलें हमें हराने के लिए नहीं आती हैं, हमें सिखाने के लिए आती हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर कश्मीर से आया है मेहराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं कि आज बहुत टाइम के बाद हम आपको सुन रहे हैं और बहुत सारा मिस भी कर रहे हैं। देखिए सर, अब मिस मत कीजिए, हम आपके साथ ही हैं, ठीक है?

और पता है दोस्तों, जब छुट्टियों में मैं भी अपनी बुआ जी के घर जाया करती थी अक्सर। अभी तो काम की वजह से सब इतना बिजी हो जाते हैं ना, जितने बड़े होते रहते हैं लाइफ में उतने हम ज्यादा बिजी होते रहते हैं। लेकिन छोटे जब थे तो हम अपनी बुआ जी के घर, नानी जी के घर छुट्टियों में जाया करते थे, और बुआ जी बड़े खुश होती हैं अपने बोलते हैं ना भतीजा भतीजी को देखकर बहुत ज्यादा, और उनका बड़ा ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार से रखती हैं। अपने बच्चों को एक बार को डांट देती हैं लेकिन उनको कुछ नहीं कहती, और उनकी हर एक चीज का ख्याल रखती हैं, बड़े प्यार से रखती हैं। और बुआ जी के घर से जाने का बच्चों का मन भी नहीं करता है, कहते नहीं हम तो बुआ जी के घर ही रहेंगे, है ना, होते है ना। देखिए जैसे अभी रिया जी भी अपनी बुआ जी के घर पर आई हुई है। तो दोस्तों हम आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गाना है यहाँ पर जो आप सभी के लिए मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ, एंड अमेजिंग ट्रैक है आज की मॉर्निंग, आप सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के उस पार, आप कहीं मचाइए, दिल से मुस्कुराइए और ऐसे ही रेडियो को एंजॉय करते रहिए। और मैं आपसे एक और सवाल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले गाना सुनवा देती हूँ, उसके बाद वो सवाल पूछेंगे, ठीक है।

0: बहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और देखिए, खूबसूरत गाने तो आपने सुने, गानों के साथ साथ यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें भी होती हैं, कुछ आपकी पसंद की, कुछ हमारी भी। जी हाँ, काम की बातों के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। और टाइम की अगर बात करें तो वक्त हुआ है 11:09। और दोस्तों, आज हमने आपसे मालूम किया था कि आप मुझे बताइए साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। और हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर हमारे श्रोताओं के मैसेज आए हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय हेलो, ये राघव बद्रा का मैसेज हमारे पास आया है। और ये रामनगर करनाल हरियाणा से हैं, बट ये अभी बुआ जी के यहाँ पर मुरादाबाद आए हुए हैं छुट्टियों में घूमने के लिए। और ये कहते हैं कि हम बुआ जी के घर पर आए हुए हैं स्टूडियो में सेलिब्रेट करने के लिए, घूमने के लिए। एंड बुआ जी ने हमें कहा कि रेडियो सुनो बहुत ही, बट मुझे तो पता नहीं था कि एफएम मुरादाबाद भी है, कोई रेडियो भी है। एंड फिर मैंने रेडियो सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट भी बहुत हुआ। और आज मैं कंपनी बाग मुरादाबाद के पास साइकिल चलाने जाएंगे। आप परिवार, बहुत अच्छी बात है। और ये कहते हैं कि साइकिल चलाने से हम हेल्दी रहते हैं और एक्सरसाइज भी होती है, पोल्यूशन भी नहीं होता है। एंड कहते हैं कि इसीलिए हमें साइकिल ज्यादा यूज करनी चाहिए। हाँ जी राघव, बहुत अच्छी बात बोली है आपने, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपने दी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हुसैन सिद्दीकी जी का। और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का। और ये कहते हैं, मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, हमारा पूरा प्रयास है, यहाँ पर खूबसूरत गाने आपको हम सुनवा रहे हैं। और दोस्तों, साइकिल चलाने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, साइकिल चलाना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि सेहत का पूरा पैकेज भी है। साइकिल चलाने से दिल मजबूत रहता है, शरीर फिट और एक्टिव भी रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है, तनाव और चिंता कम होती है, पैरों की जो मांसपेशियां हैं मजबूत होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ना पेट्रोल का खर्चा, ना ही प्रदूषण की टेंशन। यानी साइकिल आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दोस्त है, सबसे प्यारी दोस्त है। तो आप साइकिल को अपनाइए और अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। जी हाँ, रोज़ अगर आप एवरी डे बिजी होते हैं तो सुबह सुबह आप साइकिलिंग कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। उस समय गर्मी भी नहीं होती है, वेदर भी अच्छा होता है, मौसम भी ठीक रहता है। और सुबह सुबह साइकिलिंग करने से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्यों दोस्तों? तो आप कल से चलाएंगे ना साइकिल? हाँ, वादा करो मुझसे। अच्छा, प्रॉमिस कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी प्रॉमिस आपने किया है तो निभाना भी। चलो मैं आपको सुनवाती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। एंड बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसको आप इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कराती हूँ खूबसूरत गानों के इस पार। और हाँ, एक क्वेश्चन भी तो मैंने आपसे पूछना है। ओहो, मैं कैसे भूल जाती हूँ, कभी कभी होता है ना, इतनी सारी बातें होती हैं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे सारी चीज़ें मालूम करें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मालूम करना कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा दोस्तों, मेरा गला भी ना मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये बड़ा नटखट हो रहा है। मैं क्या करूँ, इसका इतना ख्याल रखती हूँ लेकिन ये है जिद पे अड़ा हुआ है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, मेरे जहन में ना एक खुराफाती वाला सवाल चल रहा है और बड़े मजेदार भी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके घर में वो कौन इंसान है, कौन शख्स है जो हर बार बस 5 मिनट बोल कर आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए वो दिखाई नहीं देते हैं? कौन है वो ऐसे शख्स, जरा मुझे बताइएगा। हाँ जी, आपके घर में कौन है वो
इंसान जो हर बार बोलते हैं कि बस मैं 5 मिनट में आया, और उनकी 5 मिनट कब 30 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हम फोन करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आधे घंटे तक तो वो ऐसे ही गुल हो जाते हैं कि पूछिए मत। उनकी 5 मिनट आधा घंटा होता है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, कौन है ऐसे शख्स आपके घर में जो 5 मिनट बोलकर आधे घंटे के लिए पूरे गायब हो जाते हैं, 30 मिनट के बाद घर पे आते हैं, फिर उनको जो सुनने को मिलता है बस पूछिए मत क्या होता है फिर उसके बाद। तो दोस्तों कौन है वो ऐसे शख्स आपकी लाइफ में, हाँ आपकी फैमिली में, जो ऐसा करते हैं, ऐसी खुराफाती करते हैं, बताओ जरा। आज आप ना बता ही दो, छुपाओ नहीं बता दो। हम इंतजार कर रहे हैं और एक गाना आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, चांदी की साइकिल सोने की सीट फ्रॉम द मूवी भाभी से, जो 1991 में आई थी। ये ट्रैक फिल्माया गया है गोविंदा जी साथ में जूही चावला जी पर, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। आज विश्व साइकिल दिवस है तो मैंने सोचा कि चलिए एक साइकिल का ट्रैक तो होना चाहिए ना।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
9: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
10: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
9: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
10: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
9: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
11: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूँ आपके साथ। आपकी खुशी जब लेकर खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आती है। और दोस्तों, अभी खूबसूरत गाने आपने यहाँ पर सुने हैं एंड हमारे पास बैक टू बैक आपके मैसेज भी आ रहे हैं। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन ऐसा शख्स है जो बोलता है कि बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ वापस, और उनके 5 मिनट कब 30 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप कॉल लगा रहे हैं तो कॉल का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है फ़ोन का, एंड फिर वो ठीक आधे घंटे के बाद घर आते हैं, कहते हैं हाँ जी बोलिए का क्या काम था। मतलब आधे घंटे के बाद वो घर आते हैं और कोई शख्स इंतज़ार कर रहा है घर पे कि 5 मिनट बोला था, चलो 10 मिनट ठीक है, 15 मिनट ठीक है, प्रॉपर आधा घंटा 1 घंटा गायब हो जाना। कौन करते हैं आपके घर में ऐसा, मतलब जो टाइमिंग को 5 मिनट को 1 घंटे में चेंज कर देता है, 1 घंटे के बाद एंटर होते हैं घर में, कौन है वो ज़रा बताओ आप दोस्तों मुझे। नंबर है 9837898986। वैसे दोस्तों मैं बताऊँ अगर अपने फैमिली की बात, तो मेरी कज़न सिस्टर है, वो मुझे बोलती है कि दी मैं 5 मिनट में ना आ जाऊंगी, बस मुझे थोड़ा काम है, और वो 5 मिनट बोल कर ना पूरे आधे घंटे में आती है घर पर। मैं बोलती हूँ कि क्या हुआ, हाँ इतनी लेट कैसे हुआ है, कि पता नहीं चला, थोड़ा काम था, बिजी थी। और आपको पता है जब घर से बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए तो टाइम लग जाता है। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं एंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी, और ये कहते हैं खुशी जी आपको आदाब, आपको भी आदाब सर, आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुनते हैं, बेहद अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपका सर। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, चेहरा क्या देखती हो दिल में उतर के देखो ना। बहुत ही प्यारा ट्रैक आज की मॉर्निंग आपने रिक्वेस्ट भेजी है और कुमार सानू जी की खूबसूरत सी आवाज में ट्रैक भी हम प्ले करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, माया देवी जी, ऋतिक और आदित्य कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है ग्राम पोस्ट लदावली से, एंड ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, आपको हमारा शो पसंद आता है सर, और कोशिश करते हैं कि कुछ गाने हम भी सिलेक्ट करके लाते हैं आपके लिए, आपकी मॉर्निंग को और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाने के लिए। एंड हमारे पास यहाँ पर प्रज्ञा का मैसेज आया है और प्रज्ञा कहती हैं कि मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो ऐसा करती है। हाँ ओहो, पर आप क्या बोलती हो अपनी बेस्ट फ्रेंड को। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राघव का, और राघव कहते हैं कि मेरी बहन ऐसा करती है, 5 मिनट बोलकर आधे घंटे के लिए गायब हो जाती है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमारे पास गुड़िया का आया है सूर्यनगर से, और ये कहते हैं कि मैम मेरी चाचा बोलकर जाते हैं मैं 5 मिनट की मैं सामान लेकर आता हूँ और पूरे 1 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। ओहो, आपके अंकल ऐसा करते हैं, पर आप अपने अंकल को क्या बोलते हो कि हो गए आपकी 5 मिनट कंप्लीट, हाँ ऐसा। और ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं गुड़िया, एंड साथ में मंजू मिश्रा जी भी हैं, थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है रिया का मैसेज आया है, और रिया कहती हैं कि मेरी बहन 5 मिनट कहती है और आधे घंटे बाद वो घर आती है, आधा घंटा लगा देती है। ओके, क्या किया जाए, हाँ क्या सजा उनको दी जाए बताओ, क्या पनिशमेंट दी जाए जो ऐसा करते हैं, कुछ तो होना चाहिए ना उनके लिए। चलो दोस्तों, ये फिलहाल मैं मजाक मस्ती कर रही हूँ, और यहाँ पर एक प्यारा सा ट्रैक अभी हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू जी की आवाज में, उसकी बात फिर से गुफ्तगू करेंगे, और कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आपके लिए है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको उसके लिए बने रहना है, चिपके रहना है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ पानी भी पीते रहिए, भूल मत जाइएगा ठीक है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। दोस्तों, सफलता जब आपके कदम चूमती है तो दुनिया आपकी तारीफ के पुल बांधने लगती है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो जीत की ऊंचाइयों पर पहुँच कर भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। और आज सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत सी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें विराट कोहली एंड साथ में अनुष्का शर्मा जी अपनी बड़ी जीत के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों का दिल जीत रहे हैं उनकी सादगी और विनम्रता। कहते हैं ना कि मंजिलें मिल भी जाएं तो सर झुकाए रखना, कामयाबी के शोर में खुद को संभाले रखना। जीवन में सफलता पाना बड़ी बात है, लेकिन सफलता के बाद भी विनम्र बने रहना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है और यही झुकाव उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन जाता है। तो दोस्तों, आज का छोटा सा संदेश यही है कि चाहे जिंदगी आपको कितनी भी ऊंचाइयां दे, अपने संस्कार, अपनी सादगी और अपने लोगों को कभी मत भूलिए। और अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता मिल जाए तो सबसे पहले आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कहना। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों, या फिर ये कल के लिए रख देते हैं। अगर सब चीज़ें आज ही पूछ लेंगे तो फिर कल क्या पूछेंगे, है ना? तो कल के लिए भी चलो बचा कर रख देते हैं आपके लिए। एंड अभी हम आपसे कुछ और भी बातें करने वाले हैं, एंड हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हाँ दोस्तों, देखिए गर्मियों का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में आप अपनी डाइट में क्या चीज़ें ले सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं आपको बताती हूँ बस। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक और यहाँ पर जो संदेश आए हैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है पूजा जी का विकास नगर से, और ये कहती है मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा जी कहती है कि मैम मेरा ब्रदर ऐसा करता है, एक्चुअली वो बोलता है कि मैं 5 मिनट्स में बस आता हूँ अभी, एंड 5 मिनट्स कब उनके 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको भी नहीं पता होता है, और वो फाइनली जब घर आते हैं तो हम बोलते हैं कि हो गए 5 मिनट आपकी कंप्लीट, हाँ, तो बोलते हैं कि वो थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन वो अक्सर हर बार ऐसा ही करते हैं और कुछ ना कुछ नया बहाना मिला देते हैं ताकि मम्मी से डांट ना सुनने को मिले। और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय खुशी मैम, आयुष जी का मैसेज हमारे पास आया है। और ये कहते हैं कि खुशी मैम, मैं आयुष बोल रहा हूँ और आज का सवाल है, आज का सवाल जो आपने पूछा है कि साइकिल चलाने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि साइकिल चलाने से वेट लॉस होता है और हमारा जो वज़न है वो कंट्रोल में रहता है, तो साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है और साइकिलिंग करना चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है संजू का, और ये कहती है हाय दी, गुड मॉर्निंग, आपने तो आज साइकिल की याद दिला दी। जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी ना तो मैं अच्छा, ये कहती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम साइकिल चला रही थी तो मैंने ना फर्स्ट टाइम ही साइकिल को नाले में गिरा दिया था। ओह शुक्र करो आप बच गए, आप नहीं गिरे वरना दिक्कतें हो जानी थी। और ये कह रही है कि मैम मुझे साइकिल चलानी है, आप मुझे एक साइकिल भिजवा दो। अच्छा जी ठीक है, मेरे पास एक साइकिल है वो आप ले जाना, ओके। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, शिफा मुरादाबाद से मैसेज करती हैं और मालूम कर रही हैं कैसी हैं आप, स्टूडियो में सब कैसे हैं। एंड हमारे यहाँ पर भी शिफा बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी फैमिली में भी सब बहुत अच्छे होंगे।
और ये एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुनना चाहती हैं अरमान मलिक की आवाज में, मैं रहूं या ना रहूं। तो चलिए दोस्तों कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। आप कहीं मचाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए और एंटरटेनमेंट का डोज तो जारी है, वो नहीं रुकेगा। तो एक प्यारा सा ट्रैक हम आपको यहाँ पर सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे करेंगे और भी बातचीत। आप बस ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, बड़े प्यारे लगते हो, हाँ, और पानी भी पीते रहिए, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। और घर में अगर आपकी मम्मा खाना बना रही हैं इस समय, तो आप उनकी भी हेल्प कराइए, ठीक है।

बिल्कुल दोस्तों, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। और क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। कहते हैं कि लंबी उम्र का राज किसी महंगी दवा में नहीं है, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। और दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी रेगुलर लाइफ में एंड अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ में कुछ आसान बदलाव कर लें तो सेहत भी अच्छी रहेगी और ज़िंदगी भी खुशहाल बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, चाय का कम इस्तेमाल करना है और दूध का ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है। चाय को स्किप कीजिए, आप दूध ले सकते हैं चाय की जगह। और गुस्सा कम कीजिए, ज़्यादा मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो उससे क्या होता है ना, आपकी सेहत खराब हो जाती है। एंड चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, उससे ना आपको क्या होगा, जब एजिटेशन होती है, गुस्सा आता है, तो उससे आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हैं तो पता है आपको साथियों, अच्छी अच्छी बातों को सोचिए एंड पॉजिटिव सोचिए। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो मुस्कुराहट तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर आ जाती है ना। और कहते हैं ना कि सबसे अच्छी दवा होती है मुस्कुराने की, तो मुस्कुराइए आप। और गाड़ी का कम इस्तेमाल करें, पैदल ज़्यादा चलें, जिम कम एंड एक्सरसाइज ज़्यादा करें, जंक फूड कम लें, हेल्दी फूड ज़्यादा खाएं, क्योंकि बाहर का खाना खाना मतलब बीमारी को इनवाइट करना। तो बाहर का ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड अवॉइड करें एंड घर का हेल्दी फूड आप अपनी डाइट में शामिल करें। और चिंता कम करें, नींद ज़्यादा लें। ज़्यादा सोचने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां अपने साथ आती हैं। तो व्यर्थ की चिंता ना करें, आप प्रॉपर नींद लें और मुस्कुराएं, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। बाकी अब मैं चलती हूँ, आपसे जाने की अनुमति लेती हूँ। मिलूंगी मैं आपको सी यू सून नई बातों के साथ, नई जानकारियों के साथ और आपकी फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए एंड गाने गुनगुनाते रहिए और अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा एवरीवन। मैं आपको मिलने वाली हूँ 3 से 5 अगेन आप ही के अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए और हेल्दी एंड टेस्टी खाना खाते रहिए। बाय बाय।

0: जरूरत। आज भी गांव गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज अब ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akash.

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ रीना। सेहत से लाभ कई के श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बहुत खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं? इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में सेहत की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए RJ रीना, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल के दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ स्ट्रेंथ विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट स्वास्थ्य दिल्ली के 100 झंडे से चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाए और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत ही जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा, इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
2: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
2: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
2: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे

0: लिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
1: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
0: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहाँ मुफ्त जांच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
1: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
0: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है। बहुत सी दवाइयां मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहां अच्छे डॉक्टर, दवाइयां और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
1: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
0: RJ रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होती है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहां थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहां भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
0: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती। लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन भरोसा करने की जरूरत है।
1: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
0: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहां और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहां सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
1: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
0: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा

0: UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
1: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
0: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं, हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंधे मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है, तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें उसे सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
0: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ कई, और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111। ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी ले। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहाँ और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहाँ लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहाँ और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या

0: कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कही। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
3: कॉल 8826213131।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
8: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: स्वागत है दोस्तों साथियों आपका, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आज तो मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत थक गया हूँ, और ये मैं सच में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ जय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने

0: लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो फिर भाभी इससे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
0: देखिए आरजे आनंद, घबराने से

0: जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
1: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
0: बहुत अच्छा सवाल है RJ आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
0: बिल्कुल RJ आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
0: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
0: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करे कि सुबह जल्दी काम शुरू करे और दोपहर की तेज धूप में आराम करे। बीच बीच में पानी पीते रहे और जहाँ भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करे। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
0: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छाव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
0: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
0: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
0: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
0: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
1: सही कहा टीकन भाभी। साथियों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छाँव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहाँ मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
0: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
1: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
0: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
1: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
0: बिल्कुल सही।
1: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
0: और स्टूडियो में ना तभी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी, मिर्ची वाली धूप लग रही है।
1: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारे

0: प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बहता रहता है। कई बार वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है। बिल्कुल, जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में, किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप, और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पे कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों, अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो इससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते, ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें।
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी

0: पानी मिलता रहे वो भी स्वस्थ रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। नहीं और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत। उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके, इन दिनों में क्या होता है ना हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
0: पानी वेस्ट होता है।
1: तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
0: हो जाता है। बिल्कुल सही,
1: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: फिर से आप सभी का स्वागत है, आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा, खाऊंगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। पर वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ, तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं, डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए। बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिसे भी बात करते हैं, तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू FM मुरादाबाद।
7: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
6: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
7: बहुत अमेजिंग,
6: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
7: डिफरेंट एरा।
6: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
7: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, अ न्यू थिंग, समथिंग न्यू थिंग इज।
6: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
7: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
6: हाँ जी मैम,
7: वो अक्यूट में आता है।
6: ओके।
7: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है जो कि 12 हफ्ते, 3 महीना, 3 महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है, है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो 3 महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
6: ओके।
7: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं वो हम करते हैं।
6: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है, छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है. एग्जैक्टली. सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया. अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द. कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है. तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं.
7: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं. सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर. हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है. ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहने पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं. ठीक. फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल. तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए. ठीक है. B12 डेफिशिएंसी होना. तो इन सारी अब आते हैं. इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द.
6: ओके.
7: ठीक है. हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं. फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं अर्थराइट बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया. डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा. जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं. चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है. तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है. दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया. ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की वो कम हो जाती है. थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है.
6: ओके मैम, ये तो हमने बात के लिए सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की.
7: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है.
6: ओके.
7: और दर्द किस तरह का दर्द है. नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है. तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं. वो देने के बाद में हम आते हैं, जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है कैनाल डायमीटर. उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की. अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा. ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया. आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है. मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में. तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी. आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता. वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है.
6: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
7: बिल्कुल भी नहीं है.
6: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है.
7: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं. आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा. तो वो मिसकंसेप्शन है. अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है.
6: Okay.
7: हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं. जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं. तो ये इसका इलाज है.
6: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच. अच्छा मैम आजकल कुछ दर्द के टेंशन, ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
7: बिल्कुल,
6: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार, मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
7: बिल्कुल।
6: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है?
7: बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
6: जी,
7: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई, वो सर मेरे दिमाग पे आया, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको, क्या अब क्रॉनिक पेन ना होता है, बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
6: जी जी,
7: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है, तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
6: ओके,
7: ऐसे।
6: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
7: डेफिनेटली।
6: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
7: बिल्कुल। क्या होता है कि हम, हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेन जी है, जेन अल्फा है,
6: बीटा है,
7: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है, तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को, अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
6: Exactly.
7: तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है।
6: बिल्कुल मैम।
7: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर, ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
6: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
7: बीच में भी हम देखते हैं,
6: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहीं ना कहीं आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है।
7: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
6: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
7: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है, अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
6: बिल्कुल, डॉक्टर निधा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निधा मैम, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी

0: वेरी करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आस पास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है।
0: करेक्ट।
1: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है।
0: ठीक है।
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
0: तो मतलब ऐसे
1: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना, कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
0: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि एक गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते, और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय, जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेन्युइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
0: ऑलराइट,
1: ठीक है।
0: अच्छा,
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
0: okay,
1: जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है, तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा। लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
0: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
0: वो में फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है।
0: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं,
0: एग्जैक्टली।
1: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
0: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है, मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है?
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
0: ओके,
1: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है। ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है, एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
0: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
1: बिल्कुल है,
0: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
1: बिल्कुल है, मानसिक तनाव देखिए, स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
0: ठीक है,
1: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
0: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली, क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: देखिए, आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
0: ठीक है
1: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि 3 महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
0: ठीक है,
1: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
0: ठीक है, ओके मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
1: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा,
0: बिल्कुल
1: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ,
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है
0: मैम। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी दर्द,
1: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसे लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
1: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं या फिर फोन में लो, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
0: फोन,
1: हाँ, अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता। या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो चॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है।
0: ओके,
1: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
0: ओके, सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं।
1: बिल्कुल, दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
0: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
1: AI
0: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सरदर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
1: नहीं, सरदर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है। तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
0: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आप आपने बताया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत। मैम थैंक यू,
1: थैंक यू
0: सो मच। और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
2: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
3: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
2: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
3: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
1: 9 साल

घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेले।

0: दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों

0: को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोय ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
4: एक नए इतिहास के
5: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर,
6: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
5: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
6: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: एक नए इतिहास के
7: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
8: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
7: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
8: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत सी दोपहर में। और आपने पुकारा, हम चले आए। सनम पुरी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा ट्रैक आपने सुना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो देखिए, हम रेडियो की रानी है, सपनों की रानी तो नहीं मालूम है। और आप सभी का तहे दिल से आरजी खुशी स्वागत करती है आप सभी की फेवरेट शो हेलो फरमाइश में। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, जिंदगी बिना रेडियो की तरह होती है। कभी यहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग चलते हैं, तो कभी सैड सॉन्ग चलते हैं, तो कभी इस तरह के गाने चलते हैं जो हमें डांस करने पे मजबूर कर देते हैं। एंड और हाँ दोस्तों, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो हमें इमोशनल भी कर देते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि हर गाना हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और आज इस शो में हम आप सभी के साथ बातचीत करेंगे एंड आपका फेवरेट गाना भी आपको सुनवाएंगे। तो आप मुझे क्या करना है आपको, हाँ आपको ना अभी जो फ़ोन आपके हाथों में है, आपको हमें कॉल करना है। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाय, क्या नाम है आपका?
1: मैं आलिया खान, जिला शाहजहांपुर, कस्बा कलाम से बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी आलिया, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
0: हाँ जी आलिया, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा। घर में सब कैसे हैं आपके, यहाँ पर फैमिली में?
1: घर में सब लोग ठीक हैं।
0: ओके, तो क्या कर रही हैं इस वक्त आलिया जी आप?
1: टाइम तो मैं काम कर रही हूँ, जरी वाला।
0: अच्छा, जरी का वर्क करते हैं ना, आपने बताया था मुझे, आई रिमेम्बर।
1: और काम होता है ना?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। ये भी एक स्किल है और बहुत बारीकी का काम है, हर कोई नहीं कर पाएगा।
1: हाँ हाँ, ऐसे ही काम होता है
0: जी। तो बताइएगा, शाहजहांपुर का मौसम कैसा है अभी?
1: बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत है।
0: हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।
1: हाँ, बाहर निकले तो अपनी पूरी तैयारी से निकले।
0: बिल्कुल जी, सही कह रहे हो आलिया। तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: जी, मूवी का नाम है सिर्फ तुम और गाने के बोले हैं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। किसी का नाम लेना चाहते हैं आप आलिया
1: जी? पहले तो आप हो।
0: हाँ जी।
1: और दो छोटी बहनें, साजिया खान, नाजिया खान, भाई का नाम नौशीम खान, भाभी का नाम फरजाना, और दो भांजे अल्तमश, अरसलान और बनारस है मौसम की।
0: ओके, सभी के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गाना। तो आपकी फैमिली सब आपके साथ में है?
1: जी, सब साथ में ही रहते हैं।
0: अच्छा, तो वो भी रेडियो सुन रहे हैं इस वक्त?
1: हाँ, इस टाइम सभी सुन रहे हैं ना।
0: अच्छा हाँ, और काम करते वक्त रेडियो सुनते हैं, बच्चे भी इस समय आराम से घर में ही रहते हैं क्योंकि गर्मी में तो वो भी बाहर नहीं जाते हैं।
1: रेडियो सुनते हुए कुछ काम भी डिस्टर्ब नहीं होता है।
0: हाँ, और अच्छा भी लगता है, काम भी अच्छे से होता है और समय भी बीत जाता है
1: जी। तो कुछ काम करो तो टाइम वेस्ट होता है, उसमें कुछ नहीं होता है।
0: हाँ, साइड में रख दो और रेडियो को आराम से काम करते रहो, गाने सुनते रहो। जी, थैंक यू आलिया, आपने कॉल किया। और सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं आलिया जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक। और आप भी मुझे कॉल लगाना ना भूलिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। वक्त हुआ है 3:11, और बहुत ही खूबसूरत है ये गीत, आप सब मिलकर एंजॉय करते हैं, हम सब मिलकर लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम से। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोई अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो आप बिना किसी देरी के हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी समय हुआ है 3:21। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो।
1: किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। तो रिश्ते होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं।
0: जी, क्या नाम है आपका? बड़ी खूबसूरत सी लाइनें आपने बोली हैं सर।
1: सबसे पहले गुड आफ्टरनून मैम जी।
0: आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून सर। नाम बताइएगा अपना।
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा तहसील नवाबगंज, छत्रपति बरेली से बोल रहे हैं।
0: जी जी, राजेंद्र जी बताइएगा, कैसे हाल चाल है आपके?
1: बस ठीक है मैम जी। और आप कैसे हैं? मौसम कैसा है मुरादाबाद में?
0: सर मौसम तो ठीक है, गर्मी है। आपके यहाँ का बताइएगा कैसा मौसम है?
1: यहाँ भी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है मैम जी।
0: हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो गई है, बारिश के बाद और ज्यादा गर्मी हो गई है।
1: हाँ
0: जी, तो आप बताइएगा राजेंद्र जी, आपने कॉल किया है आज, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जानी दुश्मन मूवी का नाम रहेगा। गाने के बोल रहेंगे, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत से गीत है। किनके साथ सुनना
1: हाँ जी,
0: चाहते हैं आप सब?
1: सबसे पहले तो आप हैं, सारा नूर अंसारी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं। आप जितने लाइव श्रोता सुनेंगे सभी को सॉन्ग रेडी कर रहेगा।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपकी पसंद का। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं हम। तब तक के लिए आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये खूबसूरत सा गीत आप सुनने वाले

0: हेलो सोना जी, तो
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
6: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक एंजॉय किया एंड दोस्तों इस खूबसूरत से गीत को गाया था मोहम्मद रफी साहब, साथ में आशा भोसले जी ने, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक एंड वर्मा मलिक जी का लिरिक्स था और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, नाम बताइएगा अपना।
1: एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम आपसे।
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैम मूवी का नाम है इतिहास और उसमें गाने के बोल रहेंगे जुदा अपने दिल भर से होने लगी है, मोहब्बत मोहब्बत को रोने लगी है।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा मोबाइल 9837896896।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना। अब मैंने कहा था ना आपको कि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना आपको हर तरह के गाने सुनने को मिलते हैं। कभी आप हैप्पी वाले गाने सुनते हैं, हैपनिंग गाने सुनते हैं, कभी आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो कभी आप इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं जो अपनों से कनेक्ट करा देते हैं, और कभी ऐसे गाने भी सुनते हैं कि आप थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है सर हमें नहीं सुन पा रहे हैं। एंड हम तब तक एक प्यारा सा गीत आपको सुनवा देते हैं दोस्तों। वो हमें नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम आपको एक प्यारा गाना सुनवा देते हैं यहाँ पर। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपको इस पर कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो चलिएगा, एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैंने चुना है अलका याग्निक जी की, बड़ी प्यारी सी आवाज़, और माधुरी जी बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी इस ट्रैक में।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और साथियों, समय हुआ है 3:49 एंड यहाँ पे हमारे साथ एक लिसनर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं बिना किसी देरी के और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए, आप कैसी हो? सोना
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका?
1: बोल रही हूँ।
0: सोना जी, बताइएगा कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं ग्राम धनोपरा पागुआ के पास।
0: सोना जी, सो के उठ गई हैं आप? मैंने कहा सोना जी, सो के उठ गई हैं आप?
1: आपकी आवाज तो नहीं आई मुझे।
0: आपको आवाज नहीं आई? मैंने बोला है सोना जी, सोकर उठ गई हैं। आप कुछ काम कर रही हैं लगता है।
1: जी नहीं, काम तो नहीं कर रही, बैठी हूँ।
0: अच्छा, आपके पास से साउंड कैसी आ रही है?
1: अच्छा
0: आपके पास से आवाजें आ रही हैं खड़पड़ की, कुछ साउंड आ रही है?
1: अच्छा हाँ, वो पंखा चल रहा है ना।
0: अच्छा हाँ, पंखे की साउंड आ रही है। बताइएगा मैम, क्या सुनेंगे आज आप? बताइएगा।
1: एक बहुत सॉन्ग सुना दी मासूम शर्मा का, मीठे बोल तेरे।
0: अच्छा, मीठे बोल तेरे। ओहो, बहुत ही
1: हाँ
0: प्यारा गाना चुना है आपने। किन के लिए सुनना चाहती हैं ये मीठे से बोल?
1: मैम, ये क्या नाम है, जो बच्चे हैं ना वो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ और सुनना कह रही, बोले नहीं ये वाला सुनवा दो, तो मैं चलो यही सुन लूंगी।
0: हाँ जी, चलिए, अच्छी बात है, बच्चों की फरमाइशें भी पूरी होनी चाहिए ना मैम।
1: मैम ये कह रही थी आज क्या नाम है, मुनी आए आखिर सर?
0: आज अखिल सर नहीं आए हैं, थोड़ा सा बिजी हैं अखिल सर। हाँ जी
1: सही है।
0: जी मैम, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो चलिए, ये प्यारा सा गाना हम सुनते हैं सोना जी की पसंद पर, मासूम शर्मा जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में। मीठे तेरे बोल परी, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। हाय,
1: नपाटा तोले परी।
0: हरियाणवी छोरी ने बोल दिया हुई है इधर। दोस्तों, अभी मुझे कॉल लगाओ, नंबर 9837898�।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं और हमसे बातचीत भी कर सकते हैं साथियों। तो ये प्यारा सा गोल्डन सा चांस आपके पास है, आप बिल्कुल भी मिस मत करो, फटाफट से हमें कॉल करो, नंबर है 9837896896। अगर आप अभी ऑन द वे कार में हैं तो हम आपसे कहेंगे कि सीट बेल्ट ठीक से बांध लीजिएगा सर, और प्यारा सा ये जो आपका चेहरा है ना, इस पर प्यारी सी स्माइल भी अब आप कर दीजिए, अभी हमें सुन रहे हैं तो इस वक्त। और हाँ, आप पानी भी पीते रहिए एंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मोहम्मद रिजवान बात कर रहे हैं, जिला मुरादाबाद गोरखपुर में काम चल रहा।
0: जी, गोरखपुर से अभी राइट नाउ आप बात कर रहे हैं, बताइएगा सर कैसे हैं आप और गोरखपुर का मौसम कैसा है?
1: जी आज तो फिलहाल मौसम अच्छा है, कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन दोपहर में गर्मी बहुत थी, अब हवा चालू हो गई है।
0: अच्छा, अभी हवाएं चल रही हैं?
1: हाँ हवाएं चल रही हैं, बढ़िया है, गर्मी ना है।
0: जी, जब हवाएं चलती हैं तो थोड़ी राहत तो मिल जाती है सर।
1: जी
0: जी, तो आप बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है, आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: अजूबा फिल्म का गाना है, मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया।
0: अरे वाह, बहुत ही प्यारा गाना है, किन के लिए सुनना चाहते हैं आप ये खूबसूरत सा गीत?
1: है एक वो सोने की गुड़िया ही है जिसके लिए सुनना चाह रहे हैं।
0: अच्छा, ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये रिजवान जी की पसंद पर प्यारा सा ट्रैक, मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के उस पार।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।
7: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
9: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
10: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
11: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
10: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
11: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
10: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
12: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना। अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं एंड जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी। आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका बताइएगा।
1: जी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा, कैसे हाल चाल है आपकी सर।
1: अच्छे हैं दीदी, गर्मी काफी पड़ रही है हमारे इधर और काफी टेम्परेचर है दीदी, अभी 41 डिग्री टेम्परेचर है आज।
0: अच्छा, आपके यहाँ तो ज्यादा है, हमारे यहाँ तो 38 डिग्री सेल्सियस है। जी तो बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: फिल्म का नाम है दीदी दिल का क्या कसूर, और गाने के बोल है मेरा सनम सबसे प्यारा है।
0: ओके, और ये खूबसूरत गीत आप किन के साथ सुनना चाहते हैं, कोई आपके मित्र है।
1: दीदी
0: मैंने कहा आप अपने दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
1: जी, राजेंद्र गंगवार जी हैं, तारुण अंसारी जी हैं, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और जो श्रोता बहन भाई लाइव सुन रहे सभी को डेडिकेट रहेगा दीदी।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और सर के पीछे सब्जी वाले भैया की भी साउंड आ रही थी, तोरी ले लो, लौकी ले लो। सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं एंड दोस्तों देखिए, कार्य भी ज़रूरी है जीवन को चलाना है तो, लेकिन आपका स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने जीवन की गाड़ी को चला पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट आपकी हेल्थ है, तो अपनी हेल्थ से ना आप थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए एंड शिकंजी पीजिए, और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। और बाकी एंटरटेनमेंट के लिए हम है ना यहाँ पर, आप हमें बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप। अभी हम आपके पसंद का गाना सुनवाएंगे आपको और आपका जो माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। चलिए अभी खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, मेरा सनम सबसे प्यारा है। देखिए, हर इंसान दुनिया में ना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ऊपर वाले जब किसी को बनाते हैं ना तो एवे नहीं बनाते हैं। लाइक हर इंसान स्पेशल है अपने आप में, बस डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से सामने वाले को देख रहे हैं। अगर आपका नज़रिया खूबसूरत है तो आपको पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश, आदाब खुशी जी।
0: जी आपको भी आदाब। सर पंखे की हवा खा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी,
1: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा, आपके यहाँ पर सब खैरियत से हैं?
1: सब खैरियत है, और आपका शो में अभी सुनना शुरू किया है मैंने, मुझे टाइम मिला तो अभी।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, शो भी सुना, और सुनते तो आप एवरी डे हैं, लेकिन आज कॉल भी किया आपने, हमें बहुत ही अच्छा लगा सर।
1: हमारे सामने इनके क्लिनिक है, ये हमारे भाई हैं, आशकार अली है और साबिर भाई हैं, ये भी आपके प्रोग्राम को रेडियो पर लाइव सुनना इस टाइम।
0: जी शुक्रिया सर को भी, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: ये फिल्म का नाम है बंधन।
0: हाँ जी,
1: जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं, इस तरह से सॉन्ग है, ये सॉन्ग प्ले करते हैं
0: जी। और ये खूबसूरत से गीत आप किनके लिए सुनना चाहते हैं?
1: ये हमारे साथ साबिर भाई है और ये आशकार अली है और सैयद शारिक अली है, मेहराज अंसारी है।
0: जी जी जी, आपकी दोस्त
1: शफी अहमद अंसारी,
0: ठीक है सर।
1: मोहम्मद अफगानपुर से मोहम्मद आरिफ खान, बाकी जो इस शो को लाइव सुन रहे हैं सभी के साथ इस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, आपकी जो प्लेलिस्ट है दोस्तों की बहुत लंबी हो गई है। हाँ जी, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
1: नए लोग होते हैं तो उनका भी नाम बोल दिया।
0: हाँ नहीं, अच्छा लगता है सर, एक्चुअली वो भी सुन रहे होते हैं तो उनको भी खुशी हो जाती है कि हमारा नाम भी आ रहा है।
1: जी जी
0: जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।
1: शुक्रिया मैम।
0: तो चलिए जीवन सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा गाना, अरे जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं, बट हम आपको मना लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बस हमें फोन तो मिलाइए। फोन अगर आप लगाएंगे नहीं तो हम कैसे आपसे बातचीत कर पाएंगे दोस्तों? उसके लिए आपको हमारा नंबर पता है ना? अच्छा नहीं मालूम है, मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और ये खूबसूरत गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कार्ड रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC।

0: आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों वक्त हुआ है 4:25 और यहाँ पर हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सुरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा हारून जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा सर, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: बस आज मौसम अच्छा है, बादल हो गए हैं आज।
0: अरे वाह, आज तो मौसम फिर बहुत खूबसूरत है आपके यहाँ का।
1: जी और आपके घर?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पर भी गर्मी है अभी तो।
1: जी लेकिन गर्मी है आज तो, लेकिन आज तो बादल से हो गए हैं।
0: जी
1: पहले तो आंधी चल रही थी।
0: चलिए अच्छी बात है, बादलों का लुफ्त उठाइए। और बताइए कौन से गाना सुनेंगे आप?
1: स्टेटमेंट सुना देना, आज मिले हो।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों, कुमार सानू और अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गाना आज मिले हो कल फिर मिलना, बहुत प्यारा गाना। और हम आज भी मिलेंगे, कल भी आपसे मिलेंगे, चिंता मत करो, बस आप हमें फोन करते रहो।

0: हेलो दोस्तों, देखिए हमने आपसे कहा था ना कि आपने गाना सुना भी बहुत प्यारा, आज मिले हो कल फिर मिलना, और हम आपसे मिलते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना आपका और हमारा दिल से दिल का है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश जी। वालेकुम सलाम, नाम बताइए अपना।
1: मैं रामपुर से शबनम जी बात कर रही हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा शबनम जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसी हो, और एफएम मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, एफएम मुरादाबाद में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आपके यहाँ पर सब ठीक है?
1: हाँ सब ठीक है हमारे यहाँ पर तो माशाल्लाह। आप बताइए दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है?
0: हाँ जी, अभी थोड़ा सा ना जुकाम हो गया है मेरे को, तो ठीक नहीं हो रहा है। बाकी आप बताइएगा शबनम जी, आज क्या सुनने का मन है आपका?
1: दीदी फिल्म का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन गाने पे बोल रहे हैं ये मौसम भी गया वो मौसम भी गया, अब तो कहो मेरे सनम फिर कब मिलोगे। ये गाना हमारे देवर जी की फरमाइश सुन रहे हैं
0: अच्छा,
1: आप, पास में बैठे हुए जी।
0: ओके, बड़ा प्यारा गाना सुनने की रिक्वेस्ट की है सर ने। तो मैम और कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: जी मैम बस दो तीन नाम कहना चाहूंगी,
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: ये है लाइबा काजमी, नेहा दी, आप
0: जी
1: और हम।
0: ओके, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: ओके बाय।
0: बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, और ये मौसम भी गया वो मौसम भी गया। ये मौसम बड़ा ही प्यारा है, गर्मी भले ही है लेकिन इस गर्मी में ठंडी चीज़ों का आनंद लीजिए और लुत्फ़ उठाइए इस गर्मी के मौसम का, क्योंकि हर मौसम अपने आप में स्पेशल होता है। देखिए चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या फिर बारिश हो, हर मौसम का एक अलग ही अनुभव होता है।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, हमारे साथ कौन कनेक्ट हुए हैं वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, कैसी हैं?
0: जी
1: खुशी जी
0: मैं
1: मैम,
0: ठीक हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं और अपना शुभ नाम भी बताइएगा।
1: मेरा नाम अरुण कुमार है मैम।
0: अरुण
1: मैं
0: कुमार
1: प्लेट
0: जी,
1: जी मैं प्लेट मिला कमाती फोर्स्ट डिलारी तहसील थावर द्वारा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का रहने वाला हूँ।
0: जी बताइएगा सर, अभी करंटली कहाँ पर हैं आप राइट नाउ?
1: मैम अभी मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ
0: ओह ग्रेट, वेरी गुड सर,
1: जी मैम। थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम। तो छुट्टियां कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप?
1: मैम ऐसी गर्मी में क्या एंजॉय है, बस गर्मी बहुत पड़ रही है मैम।
0: हाँ जी, घर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता है जी। आप बताइएगा कौन सा गाना सुनेंगे आज आप? आज आप कौन सा ट्रैक सुनेंगे सर?
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ, तू तू है वही जिस दिल ने अपना कहा, ये वाला सॉन्ग सुनना चाहता हूँ मैम।
0: अच्छा, बहुत ही प्यारा गाना है सर।
1: यस मैम।
0: और किसको कहा है दिल ने अपना, जरा बता दीजिएगा कौन है वो आपके दिल के करीब रहने वाली मैम? क्या नाम है मैम को बताइएगा?
1: चंचल देवी।
0: चंचल देवी। ओके, बहुत चंचल है मैम। हाँ, मुस्कुरा रही है अभी राइट नाउ। ओके
1: बिल्कुल भाई, थैंक
0: ठीक है सर, सुनवा दें ट्रैक। शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच,
1: यू वेरी मच मैम।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी वन सुनते हैं प्यारा से गाना सर की पसंद पर। एंड तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। बहुत ही प्यारे होते हैं जीवन साथी, एंड बहुत लकी भी होते हैं जिनको सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिलता है। अगर आपके पास है तो संभाल के रखिएगा रिश्ते को। और सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत।
2: शिमारू

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हेलो फरमाइश शो में खुशी आपके साथ है और मेरे साथ में यहाँ पर दो बड़ी सोनी सी कुड़ियाँ बैठी हैं। उनसे चलिए आपको बातचीत करवा देते हैं, हाय हेलो करवाते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हाल चाल है आपके? बोलो बोलो।
1: बहुत बढ़िया।
0: अरे एक दूसरे का चेहरा देख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ मुझसे। भैया आप मेरी ऑफिस की गर्ल हो, कहीं बाहर की नहीं हो, तो फिर इतना क्यों शॉकिंग हो रहे हो आप, बताओ मुझे। अच्छा लग रहा है ना? ओहो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था मैं अकेली क्यों बात करूं, यहाँ पर जब दो कुड़ियाँ और बैठी हैं तो उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं अपने शो में। और इतनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है क्योंकि रीना मेरे लिए मैगी बनाकर लेकर आई है और प्राची मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई है, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई है। और अभी अपने कॉलर से भी बात करते हैं, उनकी भी बल्ले बल्ले करवाते हैं उनके फेवरेट गाने सुनवाकर। हेलो फरमाइश।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएगा?
2: जी मैं रियाजुल बोल रहा हूँ, गोविंदपुर खुद जिला मुरादाबाद से।
0: जी जी जी बताएगा सर, कैसे हाल चाल है आपके?
2: जी मैम बढ़िया हाल चाल, काम कर रहे हैं गोरखपुर बस्ती में इस टाइम।
0: अच्छा, आप भी गोरखपुर में काम कर रहे हैं?
2: जी।
0: ओके, आप भी आशियाना बनाते हैं?
2: जी जी आशियाना बनाते हैं मैम।
0: जी चलिए बहुत अच्छी बात है सर।
2: घर पे थे आज ही, छुट्टी काट के आए हैं, आज फोन ही लगाना। फिर
0: बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया सर, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
2: जी मैम फरमाइश थी, गाना सुनना था, कभी तू छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है।
0: ओहो हो, ये प्यारा सा गाना किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
2: जी हमारे ये दोस्त हैं, लईक भाई हैं हमारे, मोहम्मद हसन हैं, उस्मान भाई हैं।
0: अच्छा
2: रखा है एक।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, कभी तू छलिया लगता है कभी तू क्या लगता है भैया बता दो।
1: दीवाना
0: नहीं, आप दीवानी लग रही हो, दीवाना तो नहीं लेकिन दीवानी जरूर लग रही हो। वो भी ये दीवानी है चॉकलेट की और एक दीवानी है मैगी की, और दोनों का लुफ्त मैं तो उठाने वाली हूँ दोस्तों।
1: नहीं ना, मैं चॉकलेट की हूँ ना मैगी की हूँ, मैं सिर्फ और नारियल पानी की।
0: अच्छा नहीं, मुझे तो चॉकलेट की बहुत पसंद है।
1: और मेरा फेवरेट साउथ इंडियन फूड।
0: साउथ इंडियन फूड आपको खाना है? इडली डोसा सांभर लेमन राइस मसाला राइस पसंद है?
1: कल बना के लाओगी क्या?
0: मेरे को भी पसंद है जी। चलो दोस्तों अभी हम आपसे ना जाने की अनुमति लेते हैं और ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं। एंड बस आपसे यही कहेंगे जाते जाते कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और पूरे दिन में एक काम ऐसा कीजिए आप, वो क्या करना है आपको कि किसी के चेहरे पर आप स्माइल नहीं कराएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है और हर कोई नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दिल दुखाना तो ईजी हुए है लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। और इतना भी मुश्किल नहीं कि ना कर पाएंगे आप, कर पाएंगे दोस्तों। उसके लिए ना आपको क्या करना है, हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी जज्बात, उसके लिए आपको अपना दिल साफ रखना है, नीयत साफ रखनी है और निस्वार्थ किसी की सेवा करनी है। फिर देखिएगा आपका दिन भी खूबसूरत हो जाएगा और सामने वाला शख्स का भी। तो मैं अब आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति, ख्याल रखिएगा अपना और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी शाम को बेहतरीन बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोता? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर आईडी, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, 20,000 रूपए डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है दोस्तों? फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल

तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम। लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। ओटीपी और पासवर्ड कभी ना बताएं। डराने वाले मैसेज से सावधान रहें। खुद बैंक से संपर्क करें। जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ इवनिंग मस्ते शो में। और समय की बात करूँ तो 5:22 हो चुके हैं। आर्जेरीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है ढेर सारी बातें करने के लिए। श्रोताओं, आज क्या क्या जो चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बहुत से अपडेट है मेरे पिटारे में जो आप सभी तक शेयर करना है। बस आपने क्या करना है जी, हमारे साथ ट्यूनिंग करके रखना है। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और आपसे ये कहना चाहूँगी कि बाहर जा रहे हैं तो आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं, और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की तरफ से आप आ रहे हैं तो भैया उस वो ऐसी जगह है कि आपको एनी टाइम कभी भी आप जाइए, आपको वहाँ पर भीड़ तो मिलेगी मिलेगी। PSC की तरफ जाएंगे आप तो भी वहाँ आपको भीड़ मिले ही मिलेगी। और ये टाइम तो ऐसा है जो हर कोई ऑफिस से अपने घर की तरफ रवाना होता है, तो ज़रा लोकेशन डालकर ज़रूर देख लीजिए कि किस चौराहे पर हमको भीड़ मिलेगी, उसी हिसाब से आप निकलिए। और अगला गाना भी बहुत प्यारा है, सो कनेक्ट रही आर्जेरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:31 हो चुके श्रोताओं, और आज की तारीख हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज है 3 मई, यानी कि और 3 मई का जो दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, यानी कि विश्व साइकिल दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि साइकिल सिर्फ दो पहियों का साधन नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और फिट जीवन की पहचान है। संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि वर्ष 2008 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को पर्यावरण को मतलब साफ रख सके, हम प्रदूषण से बचा सके, स्वस्थ जो अपनी जिंदगी है उसको हम बना सके। क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हो तो उसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और आजकल देखा जाए तो गाड़ियां इतनी ज्यादा चलाई जाती है, कहीं भी देख लीजिए, घर में भी देख लीजिए, अगर एक दो बंदे हैं ना तो उनके पास गाड़ियां तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, हर घर के आगे एक ना दो गाड़ियां तो आपको लगी ही मिलेगी। और बात करूं मोहल्ले की, तो जब भी आप निकलेंगे ना तो गाड़ियों की लाइनें जो लगी रहती है ना भाई, क्या ही बता सकते, इसी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो साइकिल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप चलाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि साइकिल चलाने से हाइट भी बढ़ती है श्रोताओं। तो जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है वो साइकिल ज़रूर चलाइए। तो क्योंकि ना आज हम इस एक छोटे से हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि छोटी दूरी के लिए वाहन की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और प्रदूषण को कम करने के योगदान दें, क्योंकि एक छोटी सी साइकिल की सवारी आपके शरीर, आपके शहर और हमारे पर्यावरण के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। पेट्रोल बचेगा, पर्यावरण सजेगा और स्वास्थ्य भी निखरेगा। बस साइकिल चलाइए और मुस्कुराते रहिए, और यूं ही हमारा एफएम मुरादाबाद यानी कि अपने शहर का सामुदायिक रेडियो सुनते रहिए। और मुझे आप मैसेज करके जरूर बताइए, क्योंकि हमारे यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोल दिया है कि भैया जितना हो सके आप साइकिल चलाइए, ताकि आप बीमार भी नहीं रहेंगे और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। कल मैंने जब गली से मैं निकल रही थी तो एक पुलिस वाले अंकल थे, वो अब जो कि पहले मैं उनको देखती थी बाइक से जाते थे, लेकिन 2 दिन से मैंने उनको देखा कि वो साइकिल से जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप साइकिल से क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, अपने पर्यावरण को बचाना है तो साइकिल हमें चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि साइकिल एक शर्म वाली कोई बात नहीं है, जब कुछ नहीं था जब तब हमारे पास साइकिल हुआ करते थे उस टाइम। तो इसलिए साइकिल चलाइए, फिट रहिए और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करिए। और आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि पहले बच्चे ना जब भी एग्जाम में उनके ज्यादा नंबर आ जाते थे तो एक ही बात बोलते थे, पापा हमें साइकिल चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें बाइक चाहिए, बुलेट चलिए चलाने के लिए। तो इन चीज़ों को छोड़िए और साइकिल चलाइए, जो कि हमें स्वस्थ भी रखता है। और एक प्यारा सा गाना, और इसके बाद लौट कर आते श्रोता और ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल आप मैसेज करके बता सकते हैं कि अभी भी किनके पास साइकिल है और वो साइकिल चलाना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। चलिए जी, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5:47 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 3 जून। मैं मई के पीछे पड़ी हुई हूँ गाइस, यानी कि जो मई का महीना जून का महीना होता है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है। क्योंकि भैया इस जून के महीने में ना इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना भैया कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और जून का जो महीना होता है ना, वो सिर्फ कहने के लिए जून का महीना नहीं होता है। इस भरी गर्मी में भी लोग खेत में काम करते हैं, मकान बनाते हैं, मतलब जिनका जो काम है इस भरी गर्मी में भी काम करते ही करते हैं। अगर मैं बॉलीवुड की तरफ बढ़ूं तो देखिए, हम ना हमेशा यही देखते रहते हैं, भैया कौन सी मूवी आ रही है ना, देखने चलते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मूवी भी होती हैं भाई, जिनके जिनको आप देखोगे तो फ्लैशबैक में यानी कि हिस्ट्री की तरफ आप जाते हो कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्योंकि जो मूवी होती है ना, बहुत सी मूवी रियल लाइफ से कनेक्ट होती है, वो रियल लाइफ को ही दर्शाता है, जो घटनाएं हो चुकी है, जो इतिहास में हो चुका है, जो अच्छा हो रहा है, हर चीज़ के बारे में मूवी आती है। अब कंगना रनौत की जो मूवी आने वाली है 12 जून को, जो कि इसका ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि भैया पहले हम, क्योंकि कोई भी जब मूवी देखने जाता है ना, तो सबसे पहले उस मूवी की कहानी पढ़ता है। आप पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे होंगे कि नहीं पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि भैया जब मूवी देखने जा रहे हैं तो उसका कहानी पढ़ेंगे कि आखिरकार इस कहानी में क्या है क्या नहीं है, और ट्रेलर भी साथ में देख कर जाते हैं। और इसी से पता चलता है कि भैया जो ये मूवी है ना, बहुत धमाकेदार होने वाली है, हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तब मूवी देखने जाते हैं। तो कंगना रनौत की जो मूवी आ रही है यानी कि भारत भाग्य विधाता, तो ये मोस्टली मेडिकल स्टाफ के लिए है, जो नर्सों के लिए है, इस नर्सों के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। आप इस मूवी को ज़रूर देखने जाइए, हमें पता लगेगा कि कोई भी काम आसान नहीं होता है और जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। आपको इस मूवी को देखने के बाद पता लगेगा, क्योंकि देखिए जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उंगली भी उनके ऊपर उठती हैं जिनमें कोई बात होता है, जिनमें कोई जज्बा होता है। तो आखिरकार इस मूवी के ऊपर बहुत सी बातें बनाई गई कि ये मूवी क्यों बनाया जा रहा है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन फाइनली ये मूवी अब 12 जून को रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में, और इसका ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया है। तो आप चाहते कि भैया इसका ट्रेलर देखिए और कहानी पढ़े तभी मूवी देखने जाए, तो बिल्कुल पढ़िए और मूवी देखने जाइए। और साथ ही साथ अगला गाना है बहुत प्यारा, जिनको लॉन्ग ड्राइव यानी कि लॉन्ग सफर पर जाना पसंद है, ये गाना उनके लिए है। इस गाने को एंजॉय करिए। और आज मैंने आप सभी से पूछा है कि आज है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, यानी कि साइकिल चलाना किसको किसको पसंद है, और किनके पास आज भी साइकिल है और वो कुछ दूरी पर कुछ कदम पर जाते हैं तो वह साइकिल से ही जाते हैं। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज आता है हमारे पास, रीना मैम मैं आपको प्यार भरा नमस्कार, और मैं आपका शो रोजाना सुनते हैं और आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है, थैंक यू सो मच जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, और इनका कहना है कि हम डेली यानी कि साइकिल से ही जाते हैं और एक्सरसाइज भी होती है और ये फिट भी रहते हैं हम अगर साइकिल चलाते हैं। और बहुत सारी सेफ्टी भी है इससे, बिल्कुल जी सही कहा आपने। एक तो बीच में ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप फिर उसको, बाइक तो भारी होती है ना भाई, उसको खींच कर ले जाना पड़ता है। साइकिल है बस एक हाथ से भी आप घुमाते घुमाते चले जाओगे, हवा भरवाया बस काम ख़त्म। और जो उसमें पंक्चर भी हो जाता है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये लगते हैं पंक्चर बनाई और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो साइकिल तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप भी बताइए कि अगर आप भी साइकिल चलाते हैं, अगर आपके पास भी आज भी साइकिल है तो प्लीज़ मैसेज करके बताइए, क्योंकि साइकिल चलाना कोई ये नहीं कि शर्म वाली बात नहीं है। जब सोचिए, जब कुछ नहीं था तब साइकिल था हमारे पास, बैलगाड़ी हुआ करते थे पहले, टांगे हुआ करते थे, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहता था और हम भी आसानी से पहुँच जाते थे। आई नो कि टाइम लगता था लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, इतना जो आप पोल्यूशन बढ़ चुका है वो पोल्यूशन नहीं होते थे उस टाइम। चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और
और विक्की सागर जी कहते हैं कि मैं भी साइकिल बहुत चलाता हूँ। क्या बात है जी, अच्छी बात है, साइकिल चलाने चाहिए, आप फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद के लिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: Players who want to participate in this, उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
4: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
5: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
4: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:20 हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं यानी कि मुरादाबाद के इतिहास के बारे में। हाँ जी श्रोताओं, यानी कि मुरादाबाद का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है, जिसके शुरुआत मुगल काल में हुई थी। राम गंगा नदी के तट पर यह स्थित है। शहर को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ हस्तशिल्प और पीतल उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ प्राचीन नाम यानी कि मुरादाबाद की अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन नाम था चौपाल। मुरादाबाद को बसाने में पहले इस क्षेत्र को चौपाल नाम से कहा जाता था, जो कि हिमालय की तराई में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। और मुरादाबाद का नामकरण हुआ यानी कि 1624 में संभल के मुगल गवर्नर रुस्तम खान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और यहाँ किला बनाया। उन्होंने शुरुआत में इसका नाम रुस्तम नगर रखा, लेकिन बाद में मुगल सम्राट शाहजहां को खुश करने के लिए उन्होंने सबसे छोटे बेटे राजकुमार मुराद बख्श के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद रख दिया। ऐतिहासिक है उथल पुथल यानी कि मुगलों के अलावा यह क्षेत्र है जो कि रोहिला, अफगानों और अवध के नवाबों ने भी शासन किया है यहाँ पर। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन यानी कि 1801 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे बरेली से अलग कर एक नया जिला बनाया मुरादाबाद ने, यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीतल नगरी के रूप में उद्यम यानी कि 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजों ने यहाँ के पीतल के बर्तनों और नक्काशीदार हस्तशिल्प का विदेशी बाजारों में निर्यात शुरू किया और आज भारत में पीतल के निर्यात सबसे बड़ा केंद्र है और इसीलिए इसका नाम मुरादाबाद भी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के हस्तशिल्प जो पीतल से बनाई जाने वाली बर्तनें देश दुनिया में मशहूर है, यानी कि पीतल नगरी के नाम से मशहूर है ये। सो मुरादाबाद का इतिहास क्या है वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। फिलहाल अब मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल, और कड़क सवाल क्या होने वाला है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल एक प्यारा सा गाना

0: ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।
1: ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਅੰਕਲ।
2: Apple Watch tracks.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
5: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
6: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
5: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और एक बार फिर से कनेक्ट हो गए लेकर कड़क सवाल, यानी कि कड़क सवाल आज का क्या रहने वाला है। वो जरा मैं कहती हूँ जी, रेडियो के वॉल्यूम है ना वो बढ़ा लीजिए, और जो ईयरबड्स लगा रखा है जिन्होंने कानों में, वो थोड़ा सा अप कर लीजिए, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसका राइट आंसर हमें क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल बोलूँ तो जब भी घर से बाहर जाते हैं तो भैया क्या करके जाते हैं, ऐसा आपको ही पता हो, ताकि घर सुरक्षित रहे, है ना। सो आज का कड़क सवाल ये है कि मैं एक बार मुड़ूंगा तो सबको रोक दूंगा, एक बार मुड़ूंगा तो सब कुछ खोल दूंगा। आखिरकार क्या है वो चीज़ जो एक बार मुड़ेगा तो सबको रोक देगा, एक बार फिर से मुड़ेगा तो वो सब कुछ खोल देगा। सोचिए और फटाफट मैसेज करके बताइए, नंबर है 9837896896। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो क्या करके जाते हैं, ताकि घर में घर को हम एक ट्रस्ट पर छोड़ के जाते हैं, एक छोटे से चीज़ के ऊपर, आखिरकार उसको क्या कहते हैं, आपने मैसेज करके बताना है। वन सेकेंड, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। मैं एक बार मुड़ूंगा तो सब कुछ रोक दूंगा, अगर एक बार फिर से मुड़ूंगा तो सब कुछ खोल दूंगा। बताइए जी, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। फिलहाल एक आप सभी के लिए प्यारा सा गाना।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और समय की बात करूँ तो 6:41 हो चुके हैं श्रोताओं। और इस गर्मी में ना जब भी हम बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम जूस पीते हैं, चाहे मैंगो शेक, यानी कि इस टाइम मैंगो का सीजन है तो मैंगो शेक पीते हैं, और अनार का जूस, संतरे का जूस, बनाना का जूस, शेक हम पीते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आप जिस चीज का जूस पी रहे हो, शेक पी रहे हो, क्या वो सही है या गलत है? कभी आपके दिमाग में ये आइडिया आया है या नहीं आया है? या सीधा आपने बोला कि भैया ठीक है, मैंगो शेक बना दो मेरे लिए गिलास, और बनाना शेक बना दो, ऑरेंज जूस बना दो मेरे लिए, या फिर अनार का जूस बना दो हमारे लिए। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि जो वो फल है वो अंदर से सही है या खराब है। तो जब भी आप जूस पीने जाते हैं बाहर, या बाहर से आप आ रहे हैं तो आपको भूख लग रही है और इस गर्मी में हम यही कहते हैं चलो यार गन्ने का जूस पी लेते हैं, तो आपने क्या करना है उस टाइम, चेक करना है क्या जो मैंगो है, बनाना है, अनार है, संतरा है, क्या वो सही है? ऐसा तो नहीं कि वो फल यानी कि खराब है, अंदर से उसके अंदर कीड़े हैं। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो साथ साथ जूस के साथ साथ एक कीड़े को भी अपने अंदर ले जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मैंने जब दोपहर के समय मैं गन्ने का जूस पीने गई तो जो गन्ना था वो बीच में से खराब था। जब उसने बीच में से उसको तोड़ा तो उसको ये नहीं पता कि हम भी देख रहे हैं उस गन्ने को। मैंने उसी टाइम उनको टोका कि भैया ये गन्ना तो खराब है और आप इस गन्ने का जूस बना रहे हो, सोचिए उसमें से और कितने गन्ने होंगे जो खराब होंगे। साथ ही साथ मैंगो का भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे तो न्यूज आपको दिखने वाली है कि उस मैंगो के अंदर कीड़ा और फिर भी जूस बनाकर दे रहे हैं लोगों के लिए पीने के लिए। तो कब जब भी आप बाहर जूस पी रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करिए कि वो फल ताजा है या नहीं है। अगर ताजा नहीं भी है तो क्या वो फल सड़ा गला कुछ ऐसा तो नहीं है? अगर आप ये चेक कर लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और फिर आप जो जूस पी रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम जूस को पी रहे अच्छे के लिए और वो अनहेल्दी निकल जाए हमारे लिए। इसीलिए बहुत सी चीज़ों का देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। और आज के कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा है कि अगर मैं मोड़ूँ तो सब कुछ रोक दूँ, अगर मैं खोलूँ, अगर फिर मैं मोड़ू तो हर चीज खोल दू। और मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दू कि घर पर लगाया जाता है ताला, लेकिन ताले को लगाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो अब तो आप बता सकते हैं जी। बड़ा प्यारा आंसर आपके सामने है, बस सोचना है थोड़ा सा कि बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगाते हैं, लेकिन ताला लगाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? जिसको हम मोड़ते हैं तो वो बंद कर देता है, मोड़ते तो सब कुछ खोल देता है। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल के लिए गाना बहुत प्यारा।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 6:51 हो चुके हैं। और श्रोताओ, आज के जो कड़क सवाल है बहुत ही आसान है, जो कि मैंने आप सभी से पूछा है कि अगर एक बार मोड़ूंगा तो सब कुछ खोल दूंगा, अगर फिर से मोड़ूंगा तो सब कुछ बंद कर दूंगा। यानी कि जब भी हम घर से बाहर जाते तो घर के अंदर यानी कि घर से बाहर ताला लगा कर जाते हैं, तो उसमें ताला को खोलने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम बताने आपको, वही आपका आंसर समझ गए होंगे आप। और ये अभी आपके पास मैसेज करने का एक और मौका है, प्यारे प्यारे मैसेज आ चुके हैं, लेकिन आप भी चाहते कि मैं लेट हो गया तो आप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक और गाना, उसके बाद आप सभी के मैसेज शामिल किए जाएंगे।

क्या बात है जी। चलिए अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और एक और प्यारी बात, सूर्य अस्त हमें ये सिखा कर जाता है कि अंत भी बड़ा खूबसूरत हो सकता है। साथ ही साथ जो और ऊपर से एक हमें नई रोशनी मिलती है, डेली एक नए सवेरा मिलता है, वो हमारे लिए और भी लाजवाब हो सकता है। श्रोताओं, तो इसी के साथ आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आज के कड़क सवाल यही है कि एक बार मोड़ूंगा तो सब कुछ बंद कर दूंगा, दूसरी बार मोड़ूंगा तो हर चीज खोल दूंगा। यानी कि घर में हम ताला लगा कर जाते हैं, लेकिन उसके ताला को इस्तेमाल करने के लिए किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है? सो विक्की सागर जी का मैसेज आता है कि इनका कहना है कि ताला। ओके, ताला ताला और अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। आपका शो सुन रहे हैं, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, और उसके साथ साथ आप भी अभी आपने फलों के जूस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो कि अगर आप कहीं बाहर जूस पी रहे हैं तो फल जरूर चेक करें कि वो खराब है या नहीं है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। और आज की पहेली का राइट आंसर होता है दरवाजा, गेट, दरवाजे को बंद करने वाला लॉक जिसे हम ताला लगाया जाता है। हाँ, ताला तो लगाया जाता है, लेकिन ताले को लगाने के लिए भी किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है सर, वो बताना है आपने। और इन्होंने कहा कि फूड वाउचर के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दे, कब आपके स्टूडियो आना पड़े हमें। देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ कि मैं 12 से 7 बजे तक स्टूडियो में रहती हूँ, यानी कि सुबह दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम, यानी कि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, तो 7 बजे तक, 7 बजे के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं फूड वाउचर लेने के लिए। और जो मेरे शो में मैसेज करेंगे, विनर होंगे, वो फूड वाउचर डेली जीत सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, हमारा स्टूडियो आना पड़ेगा फूड वाउचर लेने के लिए, है ना जी। चलिए फिलहाल और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आकाश जी का आता है, और उनका कहना है कि मैडम चाबी है इसका राइट आंसर। क्या बात है, ये होती है बात। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये अनुरुद्ध जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, दिल्ली से हैं, और इनका कहना है कि देखिए मैडम, हम घर पर ताला लगा कर जाते हैं और वो ताला लगाने वाला काम करता है हमारा चाबी। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो आप हमारे स्टूडियो दिल्ली से कैसे आएंगे वाउचर लेने के लिए, वो आप सोचिए और आ जाइए वाउचर लेने के लिए। और ये राकेश जी भी वाउचर जीत चुके हैं आज के राइट आंसर के साथ। तो अगले मैसेज की बात करूं तो नंदिनी हमारे साथ कनेक्ट होती है मुरादाबाद लाइन पार से, और इनका कहना है कि चाबी है, जो कि मैं डेली ऑफिस जाती हूँ तो घर में ताला लगा कर जाती हूँ, और जब भी आती हूँ तो चाबी से ताला खोल देती हूँ। तो इसका राइट आंसर होता है चाबी। क्या बात है जी, अभी अपना फूड वाउचर लेने के लिए स्टूडियो आ सकती हैं। चलिए जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त, और अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और यूं ही अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक डूबता हुआ सूरत भी बड़ा खूबसूरत लगता है। सोचिए, अंत भी बड़ा खूबसूरत होता है, और जो हमें डेली नई एक सवेरा मिलता है वो हमारे लिए और भी लाजवाब होता है। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस जरूर मिल जाएगी। चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: जानी। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
4: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
5: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण होता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
4: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
7: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
8: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
9: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
8: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: नमस्ते आदाब, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों, इस दिन को मनाने की खास वजह लोगों के बीच ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
1: मैं डॉक्टर मोनीत अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इस समय बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशन में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी, इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
1: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना। अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है, जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है वो।
0: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
1: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती है। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
0: अच्छा सर, इसका कोई विशेष कारण?
1: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशंस, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशंस के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
0: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
1: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप सोचते कि पूरा हमारा शरीर जो है वो, हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है। अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
0: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, बस ऐसी हमारी कोशिश है। और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष, कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
1: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्तल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़।
0: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
1: जैसे मैंने बताया मेनिंजियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, क्रेनोफेरिंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसे ही पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
0: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे।
1: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सरदर्द होता है, रोज होता है लोगों को सरदर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सरदर्द है। उल्टी आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है, इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर से भी देखते हैं और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
0: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और लक्षण तो आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
1: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
0: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है।
1: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचे हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक से कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं।
1: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का

0: IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
4: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
3: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
5: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5,041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
6: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे

0: बढ़ रही और आज उसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
0: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य

0: कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल TGT भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 9585 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली NCR क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। इस परियोजना को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के फौरन बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण CATS एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया। 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही सभी एजेंसियां दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अधिकारी सभी संबंधित दस्तावेज जुटा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास वैध NOC थी या नहीं।
4: कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं। तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही।
3: दिल्ली अग्निशमन सेवा के जनसंपर्क अधिकारी AK मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस इमारत में आग लगी है वह अंदर से पूरा पैक है।
5: सामने की तरफ फसाड़ लगा हुआ था और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी सील। इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं दे एक्ट एज ए चिमनी, तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा तो हीट और स्मोक बहुत तेजी से सारी फ्लोर पर फैल जाता है जिससे कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिलता।
3: दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकार त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर जन सेवा सदन पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने का अहम मंच है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति

0: का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: दिल्ली नगर निगम MCD ने आज जंगपुरा और डिफेंस कॉलोनी अंडरपास क्षेत्रों में चल रहे नागरिक सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सफाई और व्यापक स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा भी की।
2: इस दौरान MCD की जमीन पर अतिक्रमण का भी निरीक्षण किया गया और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हटाने के आवश्यक निर्देश जारी किए गए। नगर निगम ने क्षेत्र में भीड़ कम करने और यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों की प्रगति का आकलन किया। वहीं निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विकसित की जा रही वर्षा जल संचयन संरचना की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने क्षेत्र में कचरा और निर्माण मलबा फेंकने से के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे बन रही सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। निगम ने लाजपत नगर में चल रहे पार्क पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की और सभी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर कुछ अधूरी और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में भी जनता को हमेशा राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में ये फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो वो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा और लोग उसे बाद में ले सकेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोई दूसरी वस्तु नहीं खरीदी जा सकेगी और न ही राशि किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो सकेगी। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला आरोपी के पास से 216 ग्राम मादक पदार्थ और 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। ये बरामदगी दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और सक्रिय पुलिसिंग तथा निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से जन सुरक्षा बनाए रखने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने सुल्तानपुरी से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 16वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास एक विकसित भारत की नींव है। आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए श्री सिंह ने पंचायत प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरणों और नवीन समाधानों को अधिक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में एनपीए 2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 6 स्नातकोत्तर और 4 PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल ई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक संस्थान की वेबसाइट www.iimc.admissions.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली सीट आवंटन की सूची 9 जून को जारी की जाएगी। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में आज सुबह के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: चावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
10: अपोजिट
9: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
11: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
12: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
11: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
13: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हालचाल हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो शाम है ना, बहुत ही झकास है यार, बहुत ही बिंदास है। ऑफ कोर्स ये शाम जब आती है तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती है। सुबह हमारे लिए बहुत कुछ खास लेकर आती है ना, वैसे जाते जाते शाम हमें बहुत कुछ देकर जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है ना जी। और आज की शाम में कोई ज्ञान की बात नहीं करना है, मतलब आई नो दैट अब रात भी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा शहर की लाइटें ऑन हो गई गई हैं, आपके घर की लाइटें भी ऑन हो गई है ना, कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपकी शाम को थोड़ा सा बेहतरीन बनाने, कुछ शायराना अंदाज में कुछ खूबसूरत सी बातें करने आपके बीच पहुंच गया हूं। एक बार फिर से मेरे स्टूडियो में कोई खास है जिनके साथ आज हम ढेर सारी गुफ्तगू करने वाले हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, ये है आपके शहर का अमेजिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, और भैया देखो बातचीत का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी रहेगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, सो मुझे बताओ यार, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। वहां पे आके आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छी शायरी करते हो, जो भी व्हाटएवर, जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप मुझे प्लीज बताएं। हो सकता है नेक्स्ट डे आप मेरे साथ स्टूडियो में हो और आप यहाँ बैठ के ढेर सारी अपने मन की बात हमारे मुरादाबाद की जनता से कर रहे हो, है ना? आपका मन कर रहा है ना, तो बस फटाक से मुझे डीएम कर दो। चलो आज की शाम को थोड़ा सा एकदम धुरंधर बनाते हैं। आज की शाम हमारे साथ एक सुल्तान मौजूद हैं, मुरादाबाद के सुल्तान जिन्हें हम कह सकते हैं। अब आपसे इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और ये लिखते बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा सुनाते भी हैं। मेरा इनसे कैसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताएंगे और ये कैसे स्टूडियो पहुंचे ये भी जानेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले इनका वेलकम करते हैं। तो भाई बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है भाई आपके?
6: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई, अच्छी रही।
13: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये पहली मुलाकात है, वो गाना याद आ गया मुझे, वो गाना जरूर सुनेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे स्टेशन में आप आए हैं तो आपका खुली बाहों के साथ वेलकम करता है आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। तो भाई पहले अपने बारे में बताओ यार, अपना नाम वाम बताओ मेरी जनता को जरा।
6: मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं उत्तर प्रदेश के छोटे जिले अमरोहा ग्राम इकोंदा से रहने वाला हूँ, जोया के पास पड़ता है।
13: अच्छा, मुरादाबाद की जनता जानती होगी शायद, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मुरादाबाद से नहीं हूँ, बट अब तो मुरादाबाद बहुत अच्छे से मुझे भी जान गया और मैं भी जान गया हूँ मुरादाबाद को। तो अजीम ये बताओ कैसे लग रहा है ऑफिस में, आप आए हो पहली बार, आप रेडियो पे आए हो? उससे पहले कभी नहीं आए हो?
6: नहीं।
13: अच्छा,
6: बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे आपसे, खासकर बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, लहजा।
13: भाई आपका लहजा और आपका कम्युनिकेशन भी अभी बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत कर। मुझे भी अच्छा लग रहा है अजीम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाला है ये लड़का यहाँ पर। अच्छा वैसे करते क्या हो, थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ यार।
6: भाई मैंने अभी बीएससी कंप्लीट की है पीसीएम।
13: भाई लगता तो नहीं है यार, तेरी इससे देख के तो बड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है यार, ये मेरे को लग रहा था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। क्या किया है, क्या किया?
6: बीएससी कंप्लीट,
13: बीएससी कर लिए भाई, मुझे मारो, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे का क्या चल रहा है?
6: आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 8-9 तारीख में मेरा पेपर भी है यूपी पुलिस का।
13: क्या बात है, अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार भाई, ऑल द वे बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो मतलब प्रिपरेशन करते करते आप जो है जो अभी यहाँ पर सुनाने पहुंचे हो, ये वाला टैलेंट कैसे आया?
6: ये बस लिखने का शौक पड़ गया था, लिखता था, लिखने लगा, आगे को बढ़ता रहा, लोगों के ओपन माइक्स करने चालू करे, चीजें मिली, अच्छा लगा लिखने पर, लोगों को सुनाई अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने कहा बढ़िया लिखता है यार, कहीं अच्छी जगह जा। फिर आपसे मुलाकात हुई एक ओपन माइक, वहां से इंट्रक्शन हुआ।
13: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो भाई के साथ में पहला कॉन्वर्सेशन था वो एक ओपन माइक में था। मैं एक्चुअली मुरादाबाद की जनता को भी ये चीज बताना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाता हूँ या किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ जो आसपास में कराए जाते हैं, मेरा मकसद यही होता है कि वहां जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जाए और उनको सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अगर उनके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे अजीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैंने इसीलिए अजीम से कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और उसको स्टूडियो पकड़ के मैं ले आया। शायद उसने भी ये सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा उसके लिए, क्यों भाई?
6: सही बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड।
13: हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, मैं समझ सकता हूँ भाई की आज जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि आज पहली बार वो स्टूडियो में आए, राइट? इसी वजह से, बट कोई बात नहीं यार, काम डाउन, एक काम करते हैं, बढ़िया सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है? कौन सा गाना है जो तुम्हारा फेवरेट है जरा बताओ?
6: आनंद भाई मुझे जो गाना पसंद है वो है मैं शायर तो नहीं।
13: यार वो तो तू लग रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है, शायर तो ये है, इतनी बड़ी चिट्ठी लेकर आया, मतलब पूरी डायरी लेकर आया ये बंदा। यार गाना बहुत अच्छा है, मैं शायर तो नहीं मगर हसी, तुम्हें देखा तो शायरी
6: आ गई।
13: हम लोग इतने गा रहे हैं, आप रेडियो बंद मत करो, हम बिल्कुल नहीं गाने वाले, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सॉरी यार। फिलहाल अब अजीम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है तो ये गाना जरूर सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत कलाकार ने शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया है। तो ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, इस गाने के बाद जल्दी से वापस आएंगे और अजीम से कुछ बेहतरीन सुनेंगे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना नीलेंद्र जी की आवाज में। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा है वो शायर है। मैं शायर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ भाई, शायर आपका स्वागत है। मोहम्मद अजीम, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद वंस अगेन एंड वेलकम टू आरजी आनंद के साथ ये जो कन्वर्सेशन वाला शो चल रहा है। फिलहाल ये बताओ, आप शायर हो या नहीं, ईमानदारी से बताना। है ना?
1: हाँ।
0: अरे बिल्कुल यार, मुझे पता है। चल फिर कुछ बढ़िया सा हो जाए यार, हमारे दोस्तों के लिए क्या सुनाओगे, सबसे पहले क्या पेश करोगे?
1: पेश मैं कहना चाहूंगा, सबको किसी ना किसी से दुख होता है एक तरीके से। मोहब्बत होती है, इजहार होता है,
0: प्यार होता है,
1: टूट जाता है दिल, किसी ना किसी तरीके से टूटता है।
0: बिल्कुल यार,
1: अब आपके पास एक लास्ट मौका ऐसा जरूर आता है जब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरी यादें सारी मिटा दो, फोटो मिटा दो। आप ब्लैकमेल तो नहीं करोगे मुझे मेरे फोटो से? आप फोटो भी डिलीट कर देते हो, सब डिलीट कर देते हो, बसता क्या है आपके पास? यादें, दुख।
0: करेक्ट।
1: तो आप उस दुख पे उससे क्या कहना चाहोगे, आप किसी से अपने आप से कहना चाहोगे? तो शायरी अंदाज में, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। ना चला पाया मैं जोर उस पर, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या। ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है। ये भी चला गया तो उसकी याद कौन दिलाएगा, उसकी याद कौन दिलाएगा। अब यही है। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार अजीम, बहुत अच्छा आपने बोला, उसकी याद कौन दिलाएगा। और जब जो इंसान चला जाता है, कहते हैं ना कुछ होना हो उसकी यादें जरूर हमारे साथ होती हैं। आप सब कुछ बुला सकते हो, लेकिन यादें कभी नहीं बुला सकते। कहते ना, लोग कहते तो हैं अरे यार समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती यार,
1: कभी नहीं बदलती
0: है ना। इंसान की जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो यादें हैं ना वो कभी, बस सिर्फ जो साथ में बिताई है वो मेमोरी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो लौट के सिर्फ यादें आ सकती हैं।
1: बस
0: करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा अजीम ने सुनाया, और आई होप जनता आपको इनकी जो आवाज है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत आ रही है यार, आई लाइक इट योर वॉइस ब्रो, लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलूंगी तेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो इसी बात पे कुछ और बढ़िया था आपने आते ही दिल तोड़ने वाली बात कर दी। मेरा तो टूटा ही नहीं है खैर अभी तक, और टूटना भी नहीं चाहिए वैसे।

0: वेल कुछ बढ़िया सी, कुछ और कुछ शेरो शायरी बढ़िया, कुछ कुछ आप दोस्ती के ऊपर सुना सकते हो, प्यार के ऊपर तो आप सुना ही रहे हो, आज हम भी मिले हैं तो हम भी दोस्ती हैं, वी आर फ्रेंड ब्रो, तो कुछ
1: क्यों नहीं दोस्ती के ऊपर।
0: हाँ श्योर यार, एक बढ़िया सी,
1: जस्ट इमेजिन आप मुझे मिले हो, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तो मोहब्बत इसमें भी आई है।
0: अरे यार तो ये मोहब्बत वाली, तो मोहब्बत वाली पे चिपते भाई,
1: बताता हूँ ना, बताता हूँ, सुनो अगर पसंद नहीं आए तो।
0: अरे नहीं बिल्कुल आएगी भाई बिल्कुल।
1: मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ, कुछ दोस्तों को तो पा लिया। मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ,
0: कुछ दोस्तों को तो पा लिया,
1: उसे पा ना सके तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पा लिया।
0: क्या
1: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
0: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
1: तू ना सही दोस्तों के साथ खा लिया। थैंक यू सो मच।
0: ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। अजीम तुझे क्या लगता है, मतलब आज के जमाने के लड़के हैं हम भी, आजकल दोस्ती में वो प्योरिटी रह गई है क्या, जो शुद्धता एक पहले पहले के लोगों में होती थी, एक दूसरे के लिए हाँ भाई हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ में, आपके सुख दुख में, आजकल दोस्ती में वो चीज है या सिर्फ सेल्फिशनेस ज्यादा हुई है कि जब तक हमारा काम है तब तक दोस्ती है, इस चीज पे तुम क्या मानते हो, दोस्ती सच में है, दोस्ती में तवज्जो है आज भी वो? कुछ
1: कह सकते हैं,
0: कुछ कुछ है,
1: कह सकते
0: पर वो कुछ कुछ वाले नहीं, हर किसी को नहीं टकराते ना यार।
1: हाँ हर किसी को नहीं टकराते,
0: है ना, मजे की बात ये भी है।
1: हाँ।
0: और आजकल समय ऐसा हो गया है कि किसी से दोस्ती करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है यार,
1: बहुत ज्यादा।
0: वैसे तो हर कोई आपके लिए दोस्ती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको हर कोई दोस्त बना लेता है,
1: बनाना चाहता है
0: ना, हर कोई बनाना भी चाहता है, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1: कर नहीं कर सकते किसी पे ट्रस्ट, इस टाइम नहीं कर सकते,
0: है ना।
1: आप जस्ट इमेजिन हर कोई, मैं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हर किसी के काम आता हूँ। आरजे भाई जैसे कि आपने मुझे कल भी बताया था, मैं कल अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत दूर चले जाता हूँ, बट मैंने अगर कुछ भी मांगा उनसे, कुछ भी रिक्वेस्ट की, वो नहीं सुनते। कहने का मतलब है दोस्त भी,
0: मतलब तुम इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से अच्छा वन साइड वाला फ्रेंडशिप रहता है, पक्का वाला, बट सामने से तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है बदले में, है ना, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब ये चीज नहीं होती है तो कभी कभी लगता है फिर किस काम की फ्रेंडशिप,
1: फ्रेंड हो जाते हैं वो, वही होता है कि
0: फिर धीरे धीरे वो चीजें मतलब उस तरफ आने लगती है कि जो आप सोचते भी नहीं हो, और वहीं से चीजें खराब होती है यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा 20% भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना भी हर किसी बस की बात नहीं है बॉस।
1: 100 में से 80% को खत्म करके 20% को ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है,
0: बहुत मुश्किल हो, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में तो खास कर यार, है ना। वेल इसी पे कुछ और सुनाना चाहोगे अजीम हमारे लिसनर्स को?
1: हाँ, अब आपकी मोहब्बत होगी, हाँ, कोई ना कोई तो, हाँ, अब आपकी उसमें कहते हैं ना, मोहब्बत कहती है मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना, तो उसपे मैंने शायरी लिखी थी उसकी मुस्कुराहट पे।
0: अच्छा, मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हंसते लोग बहुत देखे।
0: हाँ भाई, हाँ भाई,
1: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी उस जैसी हंसी।
0: क्या बात है,
1: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी उस जैसी हंसी, खूबसूरत तो वो बहुत है पर उससे ज्यादा खूबसूरत है उसकी हंसी, वो आंखें वो लब वो उसके कान का झुमका।
0: वाह,
1: वो आंखें वो लब वो उसके कान का झुमका, है बहुत हंसी पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वो उसकी हंसी। अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, अब जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, आखिर वही तो उसको हंसने के बाद दोबारा चूमते हैं। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार, वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये जो शायर के अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर आता है लास्ट में जाते जाते, ये क्यों होता है? ये मेरे को समझ नहीं आता कि शुरू से तो इनकी रफ्तार बड़ी धीरे होती है और जाते जाते मतलब पूरा, हाँ बस मैं ही हूँ सबसे बड़ी मोहब्बत का शायराना, मतलब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार, जैसे अभी तुम्हारा देखा मैंने। ये कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है, ये शायरी का मजा बन जाता है,
1: शायरी का मजा बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन मैं ऐसे ही कहने लगता, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके,
0: भाई मत कर यार मेरे को नींद आ जाएगी, बहुत सारा करना है। तो गाइज ये जो अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन ही आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, एंड मोहम्मद अजीम मेरे साथ मौजूद है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं तो भूल ही जाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम इसके एरिया का, अमरोहा तुम्हारा मुरादाबाद 89.6। ये हंसी की बातें कर रहा था, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था, एक गाना है हसमत पगली प्यार हो जाएगा, सुना है, सुनो साहब की आवाज है, बहुत प्यारा गाना है, उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके हिम्मत जाइए, सुंदरी आनंद को।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन सोनू निगम साहब की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक साथ में श्रेया घोषाल दे रही थी साथ, और यही गाना सुनते सुनते मैं आपका साथ दे रहा हूँ और मेरे स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ही प्यारे से हमारे शानदार स्पेशल मित्र मेहमान, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, बस जो भी शब्दों से मैं इनको नवाजूंगा वो कम ही होगा। यस, आज की ब्यूटीफुल इस शाम को शानदार बना रहे मेरे साथ मोहम्मद अजीम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया बॉलीवुड में जाके ट्राई करूं यार?
1: नहीं, बहुत ट्राई आता है, मन करता है साउथ में जाऊं।
0: साउथ में आई हो जी, साउथ लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल अच्छा माना था, लेकिन तुम साउथ में क्यों जाना चाहता जी, तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा?
1: क्योंकि मुझे विलन रोल बहुत पसंद है।
0: विलन? आइयो माँ, मेरे को बाहर निकालो, तुम निकालो बाहर, मेरे को विलन लोग से बहुत डर लगता भाई। So, यार देखो ये थी जोक्स पार्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम वंस अगेन वेलकम है यार, गाना तो अच्छे अच्छे जो है आज सुनी रहे हैं आप अजीम और मैं भी एंजॉय कर रहे हैं, तो अब अभी क्या तुम सुनाना चाहोगे? लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगा यार अजीम, आजकल ना सोशल मीडिया का वाला प्यार बड़ा अलग ही है, मतलब एक होता है कि एक प्यार होता था यार जब इंसान बिना देखे प्यार करता था उसकी आवाज से, उसको इमेजिन करता था, आजकल क्या होता है ना प्यार बाद में, पहले लोग देखना पसंद करते हैं, पहले पिक्चर भेजो मैं देखना चाहता हूँ, पहले दिखते कैसे हो एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि प्यार उसके दिल से नहीं उसकी खूबसूरती से हो रहा है एक्चुअली, जबकि प्यार दिल से होना चाहिए है ना, और जो दिल से प्यार होगा ना उसमें इमोशंस होगा, फीलिंग्स होंगी। देखो यार मैंने प्यार व्यार तो कभी किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ लोगों को मिलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है ऐसे जो एक्चुअली आज भी अपनी मोहब्बत के लिए रोते हैं, तो तब मुझे लगता है कि यार आज की दुनिया में 2026 में ऐसा भी प्यार है कि लोग इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, और जो ये तड़प है ना जो बेकरारी है वही इश्क है ना, और कुछ इश्क ऐसा भी है कि अभी हुआ जिसे हम कह सकते हैं लो ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन इट्स नॉट लव इट्स अट्रैक्शन है ना, तो एक वो हो गया। लेकिन यार मैं वही कह रहा था कि दोनों प्यार अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया वाला प्यार ऐसा है कि अभी प्यार हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ब्लॉक भी हो गया है ना, तो इस प्यार में और पहले के प्यार में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन प्यार के ऊपर तुम्हारे पास कुछ है बढ़िया सा जो आज के जमाने का प्यार है स्पेशली, इस पे क्या कहना चाहोगे?
1: बहुत अच्छी शायरी है मेरे पास इसमें। जैसे होता है ना कि आप रंग रूप के लिए तो कर रहे हैं
0: हाँ भाई,
1: लेकिन आप अपनी मोहब्बत से वो तो आपके उसके पीछे हजार पागल हैं,
0: करेक्ट,
1: ठीक है ना, आपके पीछे पागल हैं ओके, बट आप उससे आखिर बार क्या कहते हो जब आपके छोड़ के जाती हो? मेरे जैसी मोहब्बत किसी और से पालो तो बता देना, मेरे जैसा हक जताने वाला मिल जाए तो बता देना, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, हमसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो बता देना।
0: क्या बात है यार,
1: so
0: वंडरफुल यार, यार हर बात पे थैंक यू बोलेगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा फिर तुम इंटरव्यू कर लेना। खैर मजा आ रहा है, हर बात में थैंक यू बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ब्रो, लेकिन यार थैंक्स अ लॉट, दिल से बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा गाइज। और मोहब्बत के ऊपर तो यार बहुत सारी ना प्यार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है, कभी कभी प्यार में ना भरोसा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी नहीं हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए प्यार में है ना, लेकिन आजकल के प्यार में ट्रस्ट कम हो गया यार, आजकल
1: तो
0: प्यार में ना ट्रस्ट में देखता हूँ बहुत कम है, लोगों को अपने पार्टनर पे बिलीव ही नहीं है, वो थोड़ा सा भी बाहर जा रही है तो उन्हें डाउट्स हो जा रहा है, अब फ्रेंड्स किससे बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब चीजें जो चलती है ना कहीं ये प्यार को कमजोर भी बनाती है,
1: सही बात
0: है ना, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहो?
1: ये है देखो, डाउट भी वही करता है अगर देखा जाए तो,
0: जो प्यार मोहब्बत करता है प्यार करता है,
1: मोहब्बत नहीं है तो वो,
0: ये बात मैं समझता हूँ, आई एग्री विद यू यार, मैं 100% बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये चीज करना भी ना सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल देता है, है ना,
1: परेशान भी नहीं करना चाहिए सामने।
0: गॉट इट, अच्छी बात है, हम किसी की केयर कर रहे हैं उसके बारे में जानने का हमारा राइट है, हमारा हक है ना, लेकिन अभी मेरा हक है कि इस पे तुम मुझे कुछ सुनाओ, कुछ बेहतरीन सी लाइनें बोलो, कुछ अच्छा सा क्या लिखा है तुमने
1: इस पे, तो एक ही चीज कह सकता हूँ मैं,

0: मोहब्बत चली गई, बिछड़ गया। अब मतलब जैसे होता है ना, प्यार होती है आपके पास तो आप रोशनी में रहते हैं एक तरीके से 24 घंटे,
1: करेक्ट यार, बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती है,
1: करेक्ट यार।
0: लेकिन उसके बाद क्या कहते थे आप, उसके बाद क्या कहोगे? कभी चमकता था कभी काता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, कभी चमकता था कभी चमकाता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, अब बाहर की तो बाहर बात छोड़, मेरे यार मेरे अंदर ही है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, तेरे बाद ना रोशनी रही ना रोशनी का घेरा, तेरे बाद ना रोशनी रही ना रोशनी का घेरा, तेरे बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा।
1: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह। सिर्फ बचा है अंधेरा ही अंधेरा, कल बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। खैर मैं इनके कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अच्छा यार, जब नया नया प्यार होता है ना अजीम, तो लोगों के अंदर ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी अच्छी चमक होती है बंदे के अंदर, उस पार्टनर के अंदर, दोनों बड़े खुश होते हैं। नया नया जब प्यार होता है एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं, तो जब नया नया किसी का हमारी लाइफ में किसी की एंट्री होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नया नया प्यार एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है,
0: तब तो मोहब्बत होती है। लड़का हर तरीके से शायरी अंदाज में भी तारीफ ही करता है।
1: हाँ, तो वही तारीफ हम सुनना चाह रहे हैं हुजूर।
0: तो तारीफ है उसके बालों की।
1: अरे वाह,
0: अब जैसे लड़की के बाल हैं, आपको आप मिलते भी हो तो उसके बाल होते हैं ना, भीगे भीगे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उस पर मैंने एक शायरी लिखी है, तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है।
1: क्या बात है,
0: तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है, लेकिन उन सब में से जो मुझे पसंद है
1: उसके
0: भीगे बाल हैं, गाल भी अच्छे हैं, पर कसम से यार लाजवाब उसकी चाल है, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, जी करता है मैं उनमें डूबा ही रहूं, लेकिन ये बात मैं उससे कैसे कहूं, ये बात मैं उससे कैसे कहूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, उसकी उसकी तारीफ में तो मैं पूरी किताबें लिख दूं, उसकी तारीफ में तो मैं किताबें लिख दूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, लेकिन यार मुझे जो उसमें सबसे ज्यादा पसंद है
1: वो उसके भीगे बाल है। जी हाँ, क्या बात है, कहूंगा मम्मी से बेटे, समझ गया।
0: अमेजिंग है।
1: अरे नहीं नहीं, इसे जोक से पा रहे। एनीवे, ये तुमने खुद ने लिखा है ब्रो?
0: हाँ, मैंने खुद ने।
1: क्या बात है, मतलब दिल की कलम से जो बात निकलती है उसे कहते हैं सच्ची होती है भाई वो, तो मतलब बता दे मुझे किसके भीगे भीगे बाल
0: है। कोई बहुत पसंद है लेकिन अब वो किसी और की पसंद है, मैं कैसे बता सकता हूं
1: भाई मुझे। अच्छा ये यार हर किसी के साथ होता है। और अच्छा एक चीज और है यार अजीम, कहते हैं कि असली और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें ना मिले, जो प्यार तुम्हारा मुकम्मल ना हो सच्चा होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है यार। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आप जिससे प्यार करो वो आपके साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है, बट कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि सच्चा प्यार ना मिले वही तो असली प्यार है,
0: मोहब्बत ही वही जो
1: बहुत, वही तो मोहब्बत है जो प्यार मुकम्मल ना हो, है ना। तो इस पे क्या सुनाना चाहोगे हमारी मुरादाबाद की जनता को, कुछ है कुछ बढ़िया सा इसमें? कोई इंसान है जिसका प्यार उससे नहीं मिला है बट वो अपने आप को खुश रखने के लिए कह रहा है कि यार नहीं, यही तो असली प्यार है, यही तो प्यार, जो प्यार मुकम्मल ना हो वही तो मोहब्बत है, जिसकी याद हमें जिंदगी भर रहे, जिसकी यादों में हम जिंदगी भर रहे, तो प्यार है।
0: अच्छा मेरे पास इस पे एक है बढ़िया शायरी। हाँ, लेकिन वो ऐसे है जैसे आपकी मोहब्बत की शादी भी तो हो जाती है ना।
1: हाँ यार,
0: दूसरी की हो गई वो,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन एक वो जो खुश है या दुखी है लड़की सामने वाली, आपकी मोहब्बत है, लड़का है लड़की जो भी है, तो आप उस लड़की की स्टोरी देखने के बाद कैसे बताओगे कि वो खुश है जबकि उसने सिर्फ पैर और पायल की फोटो लगा रखी है?
1: करेक्ट। तो
0: उस पे मैंने लिखी है शायरी। शादी हो गई थी उसकी 12/6/2025 को थी, देखा था मैंने उसका स्टेटस, ब्लॉक नहीं किया, शायद जलाना चाहती थी। इस 12 तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है, देख रहे हो मोहब्बत की एनिवर्सरी आने वाली है, तब मैंने उस पे लिखा था, वो उसके पैरों पर लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, वो उसके पैरों में लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, यार वो कितनी खुश थी, यार वो कितनी खुश थी, देखकर पता चलता है उसकी मेहंदी का रंग, और वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसके पैरों में बंधी पायल।
1: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने पूरा ओपन माइक ही खोल दिया यार मेरे स्टूडियो में आज, मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड अजीम आई होप तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा यार, अपने दिल की बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो आज, और ये जो लड़का डायरी लेकर आया ना इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है इसके दिल की बात, आज मैं सारी सुनूंगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून रहिए, एंड अभी एक गाना सुन लेते हैं कोई बढ़िया सा। इतनी सारी भीगे भीगे बालों की बातें कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ ऐसे ही तड़कता भड़कता सा गाना होना चाहिए क्या अजीम?
0: क्यों नहीं,
1: कोई गाना है तेरे दिमाग में अभी जो तू सुनना चाह रहा हो? सुनाना चाह रहा
0: हूँ। भीगे भीगे बालों पे एक गाना भी है यार,
1: बट वो मुझे याद नहीं आ रहा।
0: याद नहीं आ रहा,
1: यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई एक्चुअल में चीज को याद करते हैं ना उसी टाइम गायब होती है, वैसे हमारे जहन में घूमती रहती
0: है ना। लेकिन अभी मेरे मन में आ रहा है लेकिन वो
1: दिमाग में
0: जुबान
1: पे नहीं आ पा रहा है। भाई काम कर, तू अपना गाना याद कर, जब लौट कर आएंगे तो फिर तेरी पसंद का गाना सुनेंगे। फिलहाल तू एक मेरी पसंद का गाना सुन। दोस्तों आप भी सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। अजीम के साथ आप ढेर सारी बातें सुन रहे हैं, उसके दिल की शायरी सुन रहे हैं और साथ में आनंद भी आपका साथ दे रहा है। तो स्टे ट्यून रहिए, एक बढ़िया सा गाना सुन के जल्दी लौट।

0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं ना आरजे भाई।
1: बिल्कुल यार सही कहा आपने, मेरा नाम आनंद है यार वैसे। आरजे भाई भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आनंद बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आनंद नहीं आ रहा क्या?
0: आनंद बहुत ज्यादा आपके साथ तो आनंद आ रहा, तभी
1: इसलिए
0: तो
1: मैंने नाम रखा यार, नहीं आएगा तो भी आनंद बोल के जाएगा।
0: बहुत खूबसूरत नाम है आपका,
1: चलिए
0: इससे ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है।
1: क्या बात है, तो एक काम करते हैं इसी खूबसूरती के साथ अब इसमें चांद को ऐड कर देते हैं। तुम अभी कुछ बोल रहे थे चांद के बारे में,
0: जैसे जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं।
1: हाँ।
0: उस पे मैंने शायरी लिखी है
1: जी।
0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, तुझसे मुझे मोहब्बत है पर मैं तुझे चांद नहीं कहूंगा।
1: क्या बात
0: पूछती है?
1: है
0: क्यों? अरे पगली, मुझे ये भी पसंद नहीं तू मेरे से एक इंच भी दूर रहे, चांद तो मेरे से 384,400 किलोमीटर दूर है। फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? अगर तू चाहती है मैं तुझे कुछ कहूं तो मैं तुझे अपनी रूह कहूंगा। पूछती है क्यों? पूछती है क्यों? अरे पगली, वो मेरे मरने पर ही मेरे जिस्म से अलग होगी, मेरे जिस्म से अलग होगी। थैंक यू।
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बड़ी गहराइयों के साथ लिखते हो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर आधी रात में बैठ के लिखते हो क्या?
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में ज्यादा लिखते हैं जो शायर होते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
0: हाँ, रात को माइंड फ्रेश रहता है, यही बात आती है।
1: और ज्यादातर जो है आदमी की क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है,
0: बहुत ज्यादा जागती है।
1: करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर शायरी, जो भी आपने आज श्रोताओं तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एंड जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो आपको कैसा लगा यहाँ पर अपने दिल की बात कहकर मेरे लिसनर्स से?
0: बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, थैंक्स फॉर यू। नो, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनर्स, आपने मुझे सुना। अगर मैं पसंद आता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। अरे अगर कहीं गलती है तो मुझे बताएं आप।
1: बिल्कुल, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जल्दी चिट्ठी भेजूंगा आपको सारी गलतियों की। ये अजीम जी हमारे साथ थे आज स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी साथ करी। और जाते जाते एक जो तमाम लोगों के लिए आप पेश करना चाहते हो, जिसमें हर कोई शामिल हो, हर कोई इंक्लूड हो, कुछ ऐसी शायरी जो आप कहना चाहते हो, या किसी को किसी की मोहब्बत की याद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे जाते जाते?
0: हाँ हाँ, है ना। हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा।
1: क्या बात है।
0: हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा, तूने किसी और को चाहा ये भी एक हदी थी, तूने किसी और चाहा ये भी एक हदी थी, अब हद ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। अब हद है ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। तेरी जगह कितनों ने मांगी, तेरी जगह कितनों ने मांगी, पर अब हद ये है कि तू नहीं तो कोई हक नहीं।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच अजीम, आप आए, लवली टॉकिंग टू यू मेरे भाई। एंड आई एम रियली श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा इस शेर व शायरी वाले प्रोग्राम में। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर से एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट, और कुछ बढ़िया सुनाने आएंगे ना। और गाइज, आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत के और इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वे बेस्ट। एंड आई होप आप ऐसे ही रॉक मचाते रहो, और जो ये लिखने का सिलसिला है, जो लोगों तक अपनी बात रखने का सिलसिला है, जो आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से रखते हैं, ये भी आप कंटिन्यू रखें, करते रहें, हमारा प्यार और जो सहयोग है वो हमेशा आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जितना हमें लगेगा कि यार ये बंदे को और पकड़ पकड़ के बुलाना चाहिए स्टूडियो में अपने लिसनर्स के लिए, तो हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे।
0: पक्का, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे परेशान करें।
1: हाँ बिल्कुल, तो चलो गाइज, मैं इसको परेशान करके आता हूँ, आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात वेरी वेरी सून। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत सारी बातें हो गई यार, आई कांट बिलीव दिस कि कितनी जल्दी इतना सारा टाइम हो गया है। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय अजीम,
0: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों

0: की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधान सौधा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रूपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
7: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
9: टायर लो सोना जीतो।
10: क्या?
9: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
11: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
12: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
13: Yeah.
10: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त RJ आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: RJ रीना।
0: यस RJ रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा RJ रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए, आखिर यह योजना कैसे काम करेगी?
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
0: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
1: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करे, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखे और कैसे ब्रांडिंग करे और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
0: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
1: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
0: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
1: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
1: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
0: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
1: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
0: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
1: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
1: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए।
0: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सचमायनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
1: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
0: तो मैं हूँ आरजे आनंद
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
0: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जे रीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 9:20 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी के बीच में कनेक्ट हो गई हूँ। आई होप कि आप सभी ने खाना तो खा ही लिया होगा, है ना। बहुत से घरों में तो अभी भैया डिसाइड हो रहे हैं कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए, और बहुत से घरों में सोने की तैयारियाँ चल रही है ना। बिल्कुल सही कहा आप मैंने। और सो आपने मैसेज करके बताना है कि कौन इस टाइम क्या कर रहा है, खाना बना रहे हैं या फिर सोने की तैयारियां चल रही है, या फिर खाना खा लिया है और फैमिली वालों के साथ गप्पे।

कई बार पूछा, वह मौन ही रहा। उस रोज मैंने जाना, पहाड़ इसलिए मौन है, पहाड़ इसलिए नहीं मौन है क्योंकि वो पत्थर है, बल्कि इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो पीड़ा में हैं। पीड़ाएं अक्सर मौन धारण कर लेती हैं और धीरे धीरे पत्थर में बदल जाती हैं। तो आज का जो जमाना है ना, वो यही है। हम अपनी दिल की बातें किसी से शेयर करना नहीं चाहते, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ बातें होती हैं तो सोचते हैं यार नहीं बताएंगे किसी को, बेइज्जती होएगी हमारी, क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब आप अपने दिल की बात किसी ऐसे इंसान से शेयर करते हैं जो आपके दिल के करीब है, आपको ट्रस्ट है कि वो मेरी बात कहीं भी किसी के सामने नहीं बोलेगा। तो आज के जमाने में इंसान डिप्रेस क्यों होते हैं? इसीलिए क्योंकि वो अपनी मन की बात किसी दूसरे बंदे तक नहीं कह पाते हैं। बस फोन है, फोन में बिजी रहेंगे, दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत बातें चलती रहती हैं। सो बेटर है कि आप अपनी बात, दिल की बात, चलिए आप मान लेते हैं कि आप किसी को नहीं बताना चाहते, क्यों, तमाशा ही बनता है ना। तो भगवान के आगे खुलकर बात करिए, रोइए ताकि मन आपका हल्का है और डिप्रेस आप ना होए। सो आपके दिल में भी है कुछ बातें जो आप नहीं कहना चाहते किसी से भी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कहीं नहीं बताऊंगी आपकी बातें, आपकी बातें मेरे तक रहेगी। और किसी तक आपको मैसेज पहुंचाना है तो वो भी मैं पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज तो करना पड़ेगा, है ना। हमारा नंबर है 9837896896, जो आपको हर रोज डेली मौका देता है दिल की बातें दिल तक पहुंचाने के लिए। तो आरजे रीना है आपकी बातें सुनने के लिए, तो बिना सोचे समझे मैसेज करिए और दिल की बातें दिल तक करते हैं। चलिए फिलहाल एक बहुत ही प्यारा गाना, क्योंकि हमने बात भी पहाड़ों की करी है ना, तो एक हुसन पहाड़ों का ये गाना है, बहुत प्यारा। मूवी का नाम है राम तेरी गंगा मैली हो गई, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत बिंदास गाना। इस गानों को इंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं जी।

0: सजाना तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: चावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
11: अपोजिट
10: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 9:31 हो चुके हैं श्रोताओं। और अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि जब मोहब्बत करने के बाद अलग हो जाते हैं तो हम सोचते हैं क्या वो मेरे बारे में सोचता होगा, क्या वो चैन की नींद सोता होगा, या फिर अपने ज़िंदगी में बहुत रौक मचा रहा होगा, कुछ अच्छा कर रहा होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं उसके बारे में। तो इसी के ऊपर एक शायरी है, शायद मोहब्बत का सबसे दुखद हिस्सा ये नहीं कि कोई दूर चला गया, बल्कि ये है कि हमें आज भी उसकी याद आती है और शायद उसे पता भी नहीं कि वो अपनी नई दुनिया में व्यस्त होगा, लोगों के बीच हंसता होगा, रात को चैन से सो जाता होगा, लेकिन इधर कोई आज भी पुराने चैट ऊपर नीचे स्क्रॉल करके बस यही देखने आता है कि कभी वहाँ ऑनलाइन लिखा आता था। मोहब्बत अक्सर ख़त्म नहीं होती है, बस एक इंसान महसूस करना बंद कर देता है और दूसरा भ्रम महसूस करता रह जाता है, ज़िंदगी भर यही सोचता रह जाता है कि नहीं वो आज भी मेरे बारे में सोच रहा होगा, आज भी मुझसे प्यार करता होगा। बिल्कुल करता भी होगा आपसे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सो मैं कहना चाहूँगी आप सभी से कि प्यार वो शब्द नहीं होता है कि आप जुदा हो जाओ, अगर आप हो गए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखो, हमेशा अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, कुछ नया करो, क्योंकि यहाँ से आपको सीख मिलती है कि जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे आपने नहीं सोचा वो वैसा करिए, अपने लिए खुद के लिए इंजॉय करिए। और यूं ही रीना के साथ कनेक्ट रहिए। समय की बात करूँ तो 9:33 हो चुके हैं। एक महान आत्मा हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं, जिनको टाइम का नहीं पता कि उनके शो की खुद का उन्हीं का शो है ये श्रोताओं, और खुद पहुंचते हैं 9:33। चलिए हम उनकी आवाज़ सुनवा देते हैं आपको।
1: सभी श्रोताओं का नमस्कार, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हूँ।
0: देखिए थोड़ा सा विलम्ब नहीं है, आप 33 हो चुके हैं, आप ऐसा करेंगे तो कल से एंट्री नहीं मिलेगी आपको।
1: जैसे आप झूम जाती थी ना रात में, कभी कभी आप भी झूमती हुई आती,
0: लेकिन मैं कभी 15 से मतलब ऐसा लेट नहीं हुई, 10-15 होते।
1: चलिए आज मैं अभी अभी सभी से माफ़ी मांगता हूँ और रीना जी से अलग से माफ़ी मांगता हूँ।
0: चलिए श्रोताओ, और अभी अपना मैसेज भेजते रहिए। फिलहाल के लिए एक बहुत प्यारा गाना आप सभी के लिए, सो इस गाने को इन्जॉय करिए आप।

0: हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ और अखिल जी अब आ गए हैं स्टूडियो में। और समय की बात करूँ तो 9:38 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज की तारीख 3 जून, और शाम का महीना जैसे जैसे ढलता है ना, यानी कि जैसे शाम ढलती है वैसे ही दिल से एक सुकून भरा आवाज़ आता है। क्या कि ये ठंडी ठंडी हवाएं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, है ना। लेकिन कहना जो चाहती है वो बाद में सुनाएंगे आपको, लेकिन एक बहुत प्यारा मैसेज आ गया है। ये क्या कहना चाहते हैं, चलिए मैसेज देखते हैं इनका। नमस्कार राज, में इनका कहने का मतलब है नमस्कार, रात में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आनंद सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं और खुशी मैम भी बहुत अच्छा बोलती हैं। क्या बात है, इन्होंने सबकी तारीफ कर दी एक बार में, क्या बात है जी। बहुत अच्छा अंदाज है कि आपने बहुत ही खूबसूरत से सभी की तारीफ कर दी है और आप लोगों का बोलने का अंदाज बेहद खूबसूरत है। सो सर, आपके दिल में भी है कोई शेर और शायरी तो आप पहुंचा दीजिए हमारे तक, हम आपकी मैसेज के साथ साथ आपकी जो प्यारी शायरी है उनको भी शामिल करेंगे। और जो ये कहते हैं कि गाना सुना दीजिएगा, हाँ जी, ये शाम का वक्त है, आपको गाना हम ज़रूर सुनाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे गाने जो कि सुनकर आपको लगेगा वाह ये तो मेरे दिल की आवाज़ है। चलिए जी सुनते हैं। अच्छा, कुछ भी कहना चाहते हैं आप?
1: हाँ, मैं
0: क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि इश्क वो नहीं जो हर रोज जताया जाए, इश्क वो है जो हर पल निभाया जाए, चाहे दूरियां लाख हो दरमियां,
0: क्या बात है,
1: फिर भी दिल से दिल का रिश्ता निभाया जाए।
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने, लाख हो दरमियां लेकिन दिल की रिश्ता दिल से निभाना चाहिए श्रोताओं। और इसी बात पे मैंने स्टार्टिंग में बात करी है।
1: अच्छा,
0: कि कभी कभी इंसान ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना ज्यादा मतलब अपने दिमाग में बहुत सी चीजें लेकर घूमता रहता
1: जाता है वो अपने आप,
0: कभी किसी के आगे शेयर नहीं करता। तो मैं कहती हूँ आपके दिल में कोई बातें हैं तो शेयर जरूर करिए, उससे मन हल्का होता है, आपको अच्छा फील होता है
1: अपनों से, अपने खास दोस्त से,
0: बिल्कुल जिस पर आपको ट्रस्ट हो।
1: दोस्त की ना कोई उम्र नहीं होती है, ना दोस्त का कोई आपका एक आप वेरीफाई।
0: अरे उम्र की बात कहिए तो उम्र तो सिर्फ एक नंबर है,
1: दोस्त कोई भी हो सकता है जो आपका खास हो, उससे कम से कम कुछ तो शेयर कीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, शेयर जरूर करिए। और ये गाना बहुत ही लाजवाब है, रात के समय अगर आप सफर में हैं तो मैं कहती हूँ रेडियो को वॉल्यूम ना बढ़ा लीजिए। ये गाना वाकई में बहुत प्यारा है और जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ ना, मतलब जहाँ पर मैंने ये गाना सुना था मुझे उसकी वाइब आने लग जाती है।
1: अच्छा।
0: आपके साथ ऐसा होता है कभी?
1: हाँ, मेरे साथ भी हुआ है।
0: मतलब जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ ना तो मैं जहाँ पे थी, जहाँ ये गाना सुना है, जिस शहर में मैंने सुना है, मतलब उसकी पूरी वाइब मेरे दिमाग में ऐसे घूमने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि मैं वहीं हूँ।
1: हाँ, होता है ये बहुत।
0: तो अगर श्रोताओं के साथ भी होता है तो आप भी बता सकते हैं। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: सिर दर्द लकवा या रीढ़ की तकलीफ क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: मेरे बारे में तो सबको पता है, तुमने कई लोगों से मतलब कई नाम रख दिए मेरे, हवा हवाई और ये सब, मगर मैं रात में आता हूँ तो मैं हूँ सिर्फ आपका अपना अखिल।
1: तो मैं तो आपको अखिल ही बोलती हूँ, देख लो अब आप।
0: प्यार और ब्रेकअप दोनों ही जिंदगी के शिक्षक होते हैं।
1: अच्छा, इस पर बात करने वाले क्या
0: हम? हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने प्यार और ब्रेकअप को।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: प्यार तो सिखाता है हमें भरोसा करना, और ब्रेकअप सिखाता है खुद को मजबूत बनाना।
1: क्या बात है।
0: अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में प्यार खत्म हो गया।
1: वक्त ने सिखाया है हर दर्द सहना और मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना।
0: क्या बात कही रीना जी आपने, क्या दिल से निकली आपकी आवाज।
1: ये मैंने एकदम जैसे आपने बोला ना, कि मैंने सोचा कि यार जब जहन में ये बातें आ रही है तो बाहर भी निकाल देनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही। हर इंसान जो भी होता है आपकी जिंदगी में किसी ना किसी वजह से आता है।
1: बिल्कुल,
0: कोई वजह होती है।
1: कुछ लोग रिश्ते निभाने आते हैं, कुछ लोग सबक सिखाने आते हैं, और हमें ये नहीं कि उस चीज को गलत वे में लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ होता है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है।
0: मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर संभलना जानते हैं।
1: क्या बात है। इतना भी मत गिर जाना गाइस कि उठने तक
0: गिरना और उठना भी।
1: हाँ,
0: ये तो मुरादाबाद के गड्ढों के ऊपर आ जाती है बार बार।
1: जब बारिश आती है तब ज्यादा ख्याल आता है उसका।
0: सड़क से ब्रेकअप मत कर लेना, जिस सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो उससे तो प्यार से चलानी है ना।
1: और बारिश आ जाए तो गाड़ी को मतलब तो जो तेज नहीं चलानी है। अरे यार,
0: साइड में लगाओ और उस बारिश का आनंद लो।
1: अच्छा, बहुत से पता क्या करते है, वैसे तो गाड़ी बहुत स्लो चलाएंगे, लेकिन जिस दिन बारिश आई हो भैया, पता नहीं किस जमाने का गुस्सा उतारते हैं कि ई रिक्शा में बैठा हुआ उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं।
0: तो उन्होंने बारिश का आनंद आपको दे दिया।
1: अच्छा, ये
0: मतलब बाहर वाला क्यों आनंद से रहे, जब मैं अंदर एकदम एसी में और एकदम ठंड मौसम में चल रहा हूँ, तो बाहर वाला भी जो ठंड के साथ साथ हल्का सा गीलापन भी ले।
1: उनको बोले कि तुम भी बाहर आके देखो, अच्छा मजा मिलेगा। लेकिन श्रोताओं, जिंदगी में कुछ भी होए हमें खुश रहना चाहिए, और जो बीत गया सो बीत गया, उसको वहीं छोड़िए और आगे बढ़ते रहिए। अदरवाइज फिर आप भी यही सोचते रहेंगे कि काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता तो सब ठीक हो जाता। ये काश ना जिंदगी भर रहता ही रहता है, वो कभी इधर उधर नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है।
0: अगर आकाश भी इस बात को सुनना है तो उसके साथ भी काश रहेगा। जिसे अपना समझा वो किसी और का हो गया। दिल तो टूटा लेकिन हमें मजबूत बना गया।
1: क्या बात है जी, क्या बात है।
0: याद रखना, जो इंसान आपकी कद्र नहीं कर पाया उसके लिए अपनी खुशी को खो देना सही नहीं है।
1: क्या बात, लगता है आपका दिल कुछ ज्यादा ही टूटा हुआ है ना। रोज टूटे हुए दिल की बातें करते हैं श्रोताओं। कितनी बार टूटा है आपका दिल?
0: मेरे श्रोताओं के साथ, जिनका मतलब ऐसे दिल टूटना नहीं चाहिए। हाँ, जिनका भी दिल कहीं ना कहीं अगर टूटा है तो वो समझ सकते हैं कि हाँ, अगर कुछ कहा है तो सही ही कहा।
1: क्या बात है। इसी पर एक गाना है, तुम क्या मिले, तुम्हें क्या मिले कि छोड़ कर चले गए, चलिए गाइस इस गाने को सुनते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, तुम क्या मिले। सो ये गाना आपने एंजॉय किया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और जब ये प्रेम कहानी शुरू होती है ना, तो इसकी लाजवाब शुरुआत होती है। क्यों आखिर भैया, सही कहा ना हमने?
1: बिल्कुल सही बात है। जब अब प्रेम होता है तो उसकी तो कहानी अलग ही बनती है। जिसे चाहा था दिल से हमने, वो किसी और का हो गया।
0: क्या बात है,
1: हम मुस्कुराते रह गए और हमारा सपना खो गया।
0: मैं चाहती हूँ जिसे आपने चाहा वो भी चाहे किसी और को।
1: क्या बात कही
0: जब वो मेरा नहीं तो वो किसी और का भी नहीं, तीसरे और का हो
1: बस ऐसे ही पास ऑन होता है। मोहब्बत नाम है भरोसे का, सिर्फ कहने भर का रिश्ता नहीं। जो दर्द में भी साथ निभा जाए, उससे खूबसूरत कोई किस्सा नहीं।
0: क्या बात है, अपने सपनों को किसी के जाने की वजह मत रोकिए, है ना?
1: क्या बात है, क्या बात कही आपने।
0: हाँ जी, और आगे हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी की पहचान बाकी है। जो हार गए थे कभी मोहब्बत में, उनकी जीत की कहानी अभी बाकी है ना?
1: अभी जो है रीना जी मेरे साथ रह रह के शायर बनती जा रही है।
0: नहीं, वो तो शायर में थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मैंने जुबान पे लगाम लगा लिया था
1: तो इस बात को,
0: क्योंकि हाँ हाँ बोलो बोलो।
1: मैं ये कहूँगा इस बात से आपको हमेशा यही सीख मिलती है कि प्यार जो है ना अपना, वो हमेशा अपने तक, जो कहते हैं ना एक तरीके से हम किसी और के लिए शो करते हैं, तो उसे भी पता होना चाहिए कि हाँ हम उससे कितना प्यार करते हैं।
0: अरे पता तो तब होना, बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई लेकिन जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। जब तक आप बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा, तो बताना तो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तो वही क्रश वाली बातें रह गई। यार मैं चाहता तो था, चाहता तो मैं बता देता, चाहता तो ऐसा हो जाता। तो इसीलिए चाहे हाँ हो ना हो, बोल देनी चाहिए, दिल की बातें बोल देनी चाहिए, कभी छुपा कर नहीं रखना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: क्या बात है श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 9:57 हो चुके हैं और न्यूज़ का भी टाइम है, यानी कि 10 बजे आप सब न्यूज़ सुनेंगे। और इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। अलविदा इसलिए ले रहे हैं कि हम कल भी आएंगे और मैं मिलने वाली हूँ 5 से 7 इवनिंग मस्ती शो में, और अखिल जी और फिर से मैं मिलने वाली हूँ यानी कि रात के 9 बजे दिल की बातें दिल तक करने के लिए। और अभी तक ये जो हमने बातें करी है, आई होप कि आपके दिल में आप समझ गए होंगे कि प्यार करिए। जब वो आपसे वो दूर जाता है तो ये नहीं कि आप उसकी यादों में खोते रहिए, बल्कि अपने जिंदगी में आगे बढ़िए। और ये बहुत ही प्यारा गाना इश्क सिद्धी बाजिया,
1: कि जो आज की बातचीत है उससे बस हम इतना ही कहना चाहेंगे दोनों कि प्यार तो कीजिए जैसा आपने अभी कहा, लेकिन खुद को खोकर नहीं।
0: क्या बात है।
1: और अगर कभी दिल टूट भी जाए तो याद रखिए कि जिंदगी आपको अभी बहुत कुछ देने वाली है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूब।
1: इसी के साथ मैं अपनी जो शायरी है उसके साथ सबसे अलविदा कहूँगा। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर दर्द के बाद सुकून आता है, मत रुकना किसी के जाने से।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि जिंदगी में नया सफर जरूर आता है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कह दी इन्होंने श्रोता।
1: मैं हूँ अखिल और मेरे साथ है रीना,
0: और इसी और साथ
1: 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें हमेशा सुनते रहिए,
0: फिर और यूं ही अपना प्यार लुटाता रहिए।
1: हाँ, ऐसे ही हमें अपना प्यार लुटाता रहिए
0: और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके कुमार शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जाँच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेगी। आस पास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही है जिसमे राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412221111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
2: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
3: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
2: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
3: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
2: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
3: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
2: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
3: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
1: 9 साल

कीजिए, आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।